FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026, 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2000

0: 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

में बसते हैं। भक्त जहां जहां रहते हैं भगवान वहीं मिल जाते हैं। भक्त प्रहलाद की सुनी पुकार असुर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंबे से हुआ भगवान का नृसिंह अवतार। ईश्वर एक है, सर्वत्र व्याप्त है, हवा की तरह उसकी उपस्थिति कण कण में है। किसी स्थान में न तो वो अधिक हैं और न कम। भावना पूर्वक जहां भी उसे देखा जाएगा वो वहीं प्रस्तुत होगा, लेकिन जहां भाव रिक्तता होगी वहां उसके अस्तित्व की अनुभूति कदापि नहीं होगी। आज तक किसी मंदिर में क्या भगवान के दर्शन हुए हैं? शबरी के पास राम स्वयं गए थे, द्रौपदी के पास कृष्ण स्वयं गए थे, फिर मंदिरों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या उपयोगिता है? वस्तुतः मंदिर एक प्रकार की धर्मशाला है। जिस प्रकार आजकल सभा स्थल बनते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मंदिरों का निर्माण करवाकर उनमें देव प्रतिमाएं स्थापित की, ताकि लोग इकट्ठे हों और आपस में विचार विमर्श करें और स्नेह सौहार्द बनाए रखें। भगवान की आरती स्तुति का मतलब उनके दिव्य गुणों का स्मरण करके अपने अंदर निहित शक्ति को जागृत करना है। सामान्यतः ये माना जाता है कि आरती स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके दिव्य गुणों की आवृत्ति करके दिव्य वातावरण की सृष्टि होती है, जिसमें घृणित कुत्सित विचारों और भावनाओं के लिए तनिक भी जगह नहीं होती। आज मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी है, इतनी अधिक कि कभी कभी जनहानि तक की स्थिति आ जाती है। क्या मंदिर में देव प्रतिमा के दर्शन मात्र से अभीष्ट सिद्धि हो जाती है? संभवतः नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने विचार कार्य और व्यवहार में सात्विकता का समावेश नहीं करेंगे तब तक हमें सुख शांति समृद्धि नहीं मिल सकती। पहले की तुलना में आज मंदिरों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हुई है, लेकिन क्या कारण है कि आज दिनों दिन अशांति, असुरक्षा, अव्यवस्था, अमानवीयता बढ़ती जा रही है? धार्मिकता का तात्पर्य केवल मंदिर जाने, पूजा पाठ करने करवाने तक सीमित कदापि नहीं है, वरन अपने विचार व्यवहार और कार्य से स्वयं और दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाना सच्ची धार्मिकता है। सभी संतों महात्माओं ने इस तथ्य को बार बार कहा है कि असली धर्म मानवता है, जिसका मूल्य है प्रेम, दया, करुणा।

0: ऊर्जा ही खींच पाता है और धीरे धीरे अपने अंदर आसुरी शक्तियों को आमंत्रित करता जाता है। मंदिर या देवस्थल अपने दिव्य गुणों को उजागर करने, समाज में रहने योग्य शुद्ध वातावरण निर्माण करने, स्नेह सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के सामूहिक केंद्र हैं। इसी दृष्टि से वे मानव समाज के आलोक स्तंभ बन सकते हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना आइए आप सुनते हैं। स्वर और संगीत है अनुप जलोटा का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में भक्ति गीत। इसके साथ ही कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल और चर्चा का विषय है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चारा उत्पादन तकनीक।
1: जय जोहार संगवारी हो, मैं डॉक्टर ललित कुमार विश्वाल पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सालय ले लूंगा। मैं आप मल्ला एक नया तकनीक जो कि कृषि में तो उपयोग होत रही लेकिन पशुपालन में घलो एक उपयोग चारा उत्पादन पर हमन कर सकत हन। एक नाम है हाइड्रोपोनिक तकनीक। हाइड्रोपोनिक तकनीक काय में बिना माटी के प्रयोग के हमन केवल पानी के उपयोग करके ट्रे में अनाज ला हमन अनाज जैसे कि हमार बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, मक्का है, ए मल्ला हमन 8 से 9 दिन में हर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते और ए में प्रोटीन और जो पाचन योग्य ऊर्जा है ओकर मात्रा बहुत अधिक रहते। तो एकर विषय में आप मल्ला बताहा जेकर बहुत संभावना है संगवारी हो। ये चारा ला हमन बकरी मुर्गी हमार गाय मल्ला घलो और भैंस मल्ला सब सुअर मल्ला घलो हमन खिला सकत हन। एकर बर हमन ला का चाहिए, ए में एक प्लास्टिक के ट्रे लेबो जेकर साइज 10 फीट बाई 3 फीट और 3 इंच ओहर गहरा रही। ए में बाजरा गेहूं ज्वार मक्का एला हमन भिगा करके 12 घंटा तक भिगा करके एला हमन 24 घंटा भिगा के निकाले के बाद 24 घंटा हमन कोई पन्नी में बंद करके वाला रखबो तो उमे छोटे छोटे अंकुरण हो जाही। अंकुरण आए के पश्चात हमन जो ट्रे ऊपर में आप मल्ला बताए उमे हमन ला फैलाना है एक बराबर मात्रा में और उमे हर 5 घंटा में 5 से 10 मिनट पर पानी के फुहारा डालना है। पानी के फुहारा यदि डालबो तो हर भीग ही और हर 8 से 9 दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर चारा हो जाए और 1 किलो हर हमर 8 से 9 किलो चारा दही संगवारी हो तो प्रति किलो चारा जो उत्पादन हो ही ओकर कीमत हमला बहुत सस्ता पड़ी 2 रुपया 1.5 रुपया के आसपास पड़ी और ए में हमन दाना के खपत ला 40% तक कम कर सकत हन। तो यह बहुत फायदामंद है। कम जगह में हमन सीढ़ी नुमा सिस्टम के द्वारा भी एला हमन उगा सकत हन। ए में यदि हमर करा मान लो 10 ठी जानवर हैं तो 10 जानवर एक ट्रे हर संगवारी हो 30 से 32 किलो चारा देते तो एक ट्रे हर 2 गायला 1 दिन के वर्ष पर्याप्त चारा दी। काबर की 15 से 16 किलो एक दुधारू गायला चारा चाहिए। यदि हमर करा 10 ठी गाय हैं तो हमारा रोज 5 ठी ट्रे की जरूरत पड़ी। यदि हमर करा 40 ठी ट्रे यदि राखबो और 5 ठी ट्रेला खाली छोड़ते हुए हर दिन एक ट्रेला भरत जाबो तो हमला 8वां दिन चारा उपलब्ध हो जाही और वही जोन ले हमन चारा उगाबो हर फिर खाली हो जाही। ओला यदि हमन सुबह चारा लेबो तो शाम के फिर ओला भरना है। तो इस प्रकार से राउंडअप विधि द्वारा क्रमिक चक्र के माध्यम से हमन पूरा महीना भर चारा ले सकत हन। ए में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रथे विटामिन रथे और एकर जो पाचकता रथे 95% पाचकता रथे तो गर्मी के दिन भर यह बहुत लाभदायक हो सकते है संगवारी हो। एकर का लाभ है, चारा के अभाव के स्थिति में हमन अच्छा चारा के विकल्प के रूप में ला हमन देखत हन। कम जगह में कम समय में कम लागत में पौष्टिक चारा हमन ला मिल सकत है। चारा के

0: जो हमर मान लो कोई 10 किलो दूध देते ओकर पीछे हमला लगभग 100 से 150 रुपया तक के दाना जो लग जाते 40% अर्थात 60 से 70 रुपया तक हमन कमी ला सकत हन ओकरे सेती। और जानवर के प्रतिरोधक क्षमता में क्योंकि विटामिन ए में बहुत मात्रा में रहते ओकरे बाद चारा के कमी ले हमन एमे निजात पा सकत हन। दूध हमारा संगवारी हो आधा लीटर तक एला खिलाए ले बढ़ सकत है और खनिज लवण की उपलब्धता लाए हर पूरा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार संगवारी हो।
1: कृषि संबंधित जानकारी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में 100.7 MHz पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस कार्यक्रम। देश गान हम आपको सुनवाएंगे 6:50 पर। सुबह 7:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का। 7:35 पर होगा कार्यक्रम झरोखा। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर आप सुनेंगे 7:45 पर। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। सुगम संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 10:30 पर। शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम हम आपको सुनवाएंगे 5:10 पर। 5:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय होगा हुनरमंद हाथ, खुद का व्यापार, आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ती नारी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। और चर्चा का विषय होगा बरसात में कैसे करें त्वचा की देखभाल। साथी सुनिएगा क्रम शासकीय योजना और भेंट वार्ता। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में 6:20 पर शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। किसान बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे खरीफ में दलहन और तिलहन अपनाएं ज्यादा लाभ कमाएं, इस विषय पर चर्चा। और नसीहत का विषय होगा वैज्ञानिक विधि से खेती अपनाएं अपने को समृद्ध बनाएं। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस भाग 55। गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

पर में अभी आप सुन रहे थे मानस गान। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समोस्वर में देश गान 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार,
1: हाल और सुने समाचार। तो अब थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे समाचार, और समाचार के ठीक बाद सुनीता होगी आपके साथ यहीं एफएम गोल्ड पर, लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। बहुत ही खास प्रोग्राम, उसका करना होगा आपको इंतजार। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं समाचार संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी में।

0: उपहाराणां दानानां च वञ्चना सम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश सञ्जाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने

0: पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह की गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे जीरो से रीस्टार्ट फिल्म से। आवाजें हैं शान, सोनू निगम और शंकर महादेवन की। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और संगीतकार हैं स्वानंद। छबा कीजिएगा शांतनु मोइत्रा।

0: भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडिकर और साथियों का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी द साबरमती। गीतकार और संगीतकार थे कार्तिक कुश। आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली।

0: बॉम्बे टॉकीज और
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।
0: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
2: मुझे याद सब है जरा जरा।
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
4: कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का अगला गीत आप सुनेंगे नाम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और गीतकार हैं समीर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: आशी तितोरिया के स्वर में अभी आप सुन रहे थे अथर्वा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था राजा रमेश ने और संगीतबद्ध किया था श्रीचरण पाकला ने। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का अंतिम गीत आप सुनेंगे आयुष्मती गीता मैट्रिक पास फिल्म से। स्वर है मनीष जाधव का, संजीव आनंद और विजय नरेंद्र शिंदे ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है संजीव आनंद ने।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार श्रोताओं, प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस अर्थात MSME Day की, जो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मित्रों, MSME क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप जैसे अनेक व्यवसाय MSME के अंतर्गत आते हैं। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, डिजिटल इंडिया और कौशल विकास कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, MSME क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। छोटे उद्यम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और देश की आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। श्रोताओं, आज आवश्यकता है कि युवा वर्ग नौकरी खोजने के साथ साथ उद्यमिता की ओर भी कदम बढ़ाएं। नवाचार, तकनीक और परिश्रम के बल पर छोटे व्यवसाय बड़े उद्योगों का रूप ले सकते हैं। विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस हमें यह संदेश देता है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम उद्यमिता को बढ़ावा दें, स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर, आइए अब सुनते हैं। स्वर है गोरेलाल बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: गोरीलाल बर्मन और रतन सबिहा के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम बाजीमांदर अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00, दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक लगातार और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। सुगम संगीत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 10:10 पर। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:10 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम पॉप टाइम का। वनिता विहार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:30 पर। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय होगा हुनरमंद हाथ, खुद का व्यापार, आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ती नारी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। और चर्चा का विषय होगा बरसात में कैसे करें त्वचा की देखभाल। साथ ही सुनिएगा क्रम शासकीय योजना और भेंटवार्ता। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में शाम 6:20 पर, 7:00 और रात्रि 8:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा खरीफ में दलहन और तिलहन अपनाएं, ज्यादा लाभ कमाएं, खेत बचाओ अभियान। और नसीहत में चर्चा का विषय होगा वैज्ञानिक विधि से खेती अपनाएं, अपने को समृद्ध बनाएं। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम सुनिएगा 10:00 और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय राग पर आधारित कार्यक्रम सूर्यामिनी। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल

0: रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने
1: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
5: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी।

0: अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
7: प्रकृति की बात

0: चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे भारत में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं, उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों में योग और ध्यान को भी शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को मेडिटेशन, ध्यान और योग प्राणायाम के जरिए स्वस्थ करने का एक मार्ग दिखाया जाता है। श्रोताओं, यदि हम योग और ध्यान से जुड़ेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि योग और ध्यान जो है हमारे चित्त, हमारे शरीर को आत्मीय रूप से स्वस्थ बनाता है। फिर हम उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होंगी। तो श्रोताओं, योग और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग और ध्यान कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जी जी, तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान क्या है।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि आमतौर पर जैसे कि हम इसको अगर योग की फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हम लोग बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक विधा है। लेकिन चूंकि मैं वैज्ञानिक और चिकित्सीय पक्ष से अगर उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूं तो यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, अपने ब्रेथ को और अपने माइंड को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे, एक सिंक्रोनाइज मैनर पर आप कार्य कर सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन जब होता है बॉडी, ब्रेथ और माइंड का एक सिंक्रोनाइज वे पर, और यही कोऑर्डिनेशन, यही यूनियन को हम योग कह सकते हैं
0: जी।
1: ध्यान भी आज के तरह एक योग की ही विधा है। अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो पतंजलि जी का नाम लेना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनको दिखाया। और ध्यान भी पतंजलि के जो अष्टांगिक योग का एक पार्ट है। ध्यान में हम बेसिकली आज के तारीख में लगभग दो चीजों में बड़ा ही उनमें दिग्भ्रामक होता है कि ध्यान क्या है। ध्यान को लोग बाग धारणा समझते, कंसंट्रेशन समझते हैं। ध्यान एक तरह से एकाग्रता नहीं होता है। जब आप एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट के अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअस देखते जाते हैं, ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो वो प्रकार को ध्यान कहलाता है। तो ध्यान देखा जाए तो मन का विश्राम है एक प्रकार से। जब मन आपका विश्रांति अवस्था में पहुंच जाता है उसी को हम ध्यानस्थ अवस्था कहते हैं। तो मन का विश्राम ही ध्यान है कह सकते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, हम योग और ध्यान के बारे में थोड़ा सा आगे और चले, उससे पहले हम आपसे एक जो है मूलभूत सवाल जानना चाहेंगे कि आज हर व्यक्ति बीमार है और किसी को शुगर, बीपी, हड्डियों की बीमारी, कई तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इसका जो है एक क्या कारण हो सकता है?
1: आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका मुख्य जो कारण जो है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का, जैसे आप जान रहे हैं कि युग है और इतना कंपटीशन है, तो जो शरीर जो होता है उसकी भी एक क्षमता होती है। तो कई बार आपका जो शरीर है इस कॉम्पिटेटिव युग के साथ में फाइट नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता है। और धीरे धीरे यही कोप अप नहीं करने की वजह से उसको एक तनाव शरीर के भीतर आना शुरू हो जाता है। और ये तनाव भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक मुख्य समस्त बीमारियों का कारण है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं
0: जी।
1: जिसमें आप जैसे बताया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां एक तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज की कैटेगरी में आती है। इनका जो मुख्य कारण मन में होने वाला दबाव है, तनाव है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं योग और ध्यान की, तो सबसे पहले हम बात करें योग की, क्योंकि 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाना जाता है। तो योग के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से योग जो है हमारे लिए लाभकारी होते हैं?
1: देखिए, अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखिए,

0: आज का जो आधुनिक मनुष्य जो हो गया है, मोबाइल का डेस्कटॉप का बहुत आगे हो गया है, और उसके वजह से एक नई बीमारी जो उत्पन्न हो गई समाज में, जो हो सकता है आने वाले समय में लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे, कंप्यूटर डिस्क सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहे हैं कंप्यूटर को यूज करने से, लगातार स्क्रीन देखने से, आपका जो हेड है वो थोड़ा सा आपके जो गर्दन जो है उससे आगे आ गया है, तो इस समस्या के वजह से भी एक आधुनिक जगत में एक समस्या आ रही है। और इसके लिए जैसे आपने पूछा कि किस तरह के योगा अभ्यास करना से मदद मिलेगा, तो मेरा ये कहना है चूंकि ये हम एक कैटेगरी में बांटेंगे तो उसको फॉरवर्ड हेड हो जाता है, बॉडी जो आपका है उसमें जो आपको गर्दन जो होता है सिर थोड़ा सामने की ओर जाता है, तो आप पीछे झुक करके जितने भी अभ्यास हैं जिसमें बैक बेंडिंग जो आसना है वो आप करेंगे तो निश्चित ही रूप से जो आधुनिक युग में जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को रिवर्स करने में एक लाभकारी हथियार के रूप में सिद्ध होगा। वो उसमें उष्ट्रासन आप बोल सकते, उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, सेतुबंध आसन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। योग के तो प्रकार जो मुख्य रूप से जो कर्म योग है जिसमें व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, दूसरा है ध्यान योग जिसकी आप बात कर रहे थे, जो तीसरा जो मुख्य प्रकार है भक्ति योग जिसमें आप सरेंडर हो जाते हैं अंतिम, जिसे आप भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं और उनके सानिध्य को सबसे समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो भक्ति योग की कैटेगरी में आता है। तो मुख्य रूप से योग के तीन प्रकार होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, इस तरह से।
1: जी जी।
0: प्राणायाम जो देखा जाए तो ये जो पतंजलि जी ने जो अष्टांगिक जो मार्ग बताया है जिसमें उन्हें यम और नियम से स्टार्ट किया है कि यम नियम जो है, फिर उसके बाद में पहले यम और नियम को साधना है, फिर आसन करना है, आसन के बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है प्राणायाम।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई योग की, तो यदि हम जानना चाहें कि जब हम योग करते हैं तो योग करने का क्या तरीका हो सकता है, हमें कैसी जगह बैठना चाहिए और कितना समय देना चाहिए?
0: देखिए प्रारंभ में तो समय का महत्व बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि अगर यदि आप दिन भर में 24 घंटे में यदि आप एक ही समय का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और सुबह प्रातः काल का समय सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रातः काल अपने दैनिक जो भी क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर के प्रातः काल आप उसमें बैठे साधना करें अपना, तो बहुत बेस्ट होगा। और यदि इसके अलावा यदि संध्या काल में भी आप यदि कर पाए तो और भी अच्छा है कि संध्या काल भी थोड़ा समय निकाल के करें, कम से कम मैं बोलता हूँ कि आपके 20 से 25 मिनट का समय बेस्ट रहता है ना, जिसमें आप थोड़ा सा आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए, उनका एक कम्बो पैक बना करके आप कीजिए, तो निश्चित ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च में भी अभी आ चुका है, तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि योग करने से निश्चित ही आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका जीवन जीने का जो सलीका है उसमें सुधार देखा गया है, कई तरह के रिसर्च इसको प्रमाणित भी कर रहे हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं एक युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक वृद्ध लोगों की, तो युवाओं के लिए और एक बुजुर्ग के लिए अलग अलग अगर हम योगों की बात करें और योग की समय की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए क्या है, मेरा इसमें एक सुझाव ये रहेगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों में उनके लिए जैसे कि जो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा सीरीज है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें प्रतिदिन अपने नए साथ में 20 से 25 मिनट तक, तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो युवा वर्ग हैं जिनको जीवन में एक गतिशीलता चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार। तो प्रतिदिन अगर युवा वर्ग सूर्य नमस्कार करे तो निश्चित ही उसको उनसे बहुत फायदा होगा, उनके जीवन में गतिशीलता आएगी, एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जैसे सूर्य का नाम ही ऊर्जा है ना, हम ऊर्जा के रूप में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य का नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, निश्चित ही युवाओं को इससे फायदा होगा। लेकिन बुजुर्ग वर्ग लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें तो फायदा होगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
0: बिल्कुल, मेरे पसंद का एक गीत है पल पल दिल के पास

0: तुम रहती हो, गाना बहुत मेरे दिल के करीब है।
1: जी जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं योग और ध्यान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में, आइए अब बात करते हैं ध्यान के विषय में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये प्रश्न लोगों को बहुत, लोग बात इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देना चाहूंगा। विभिन्न जो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान मन का विश्राम है, मन का व्यायाम है, ये ध्यान है। लेकिन जैसे आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सर जो ध्यान के कितने प्रकार होते, तो इस पर विभिन्न रिसर्च होने के पश्चात में ये देखा गया कि ध्यान के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको आप कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की कैटेगरी में कहते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आप किसी भी अपने श्वास पर कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ध्यान के जो प्रकार है वो कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन में आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। जो ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन है उसको हम लोग सहज ध्यान भी कहते हैं, जिसमें आप विदाउट जजमेंटल आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है, इस तरह के जो ध्यान है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और जो तीसरा जो ध्यान होता है वह कहलाता है करुणा ध्यान, जिसमें हार्ट फिल्डनेस मेडिटेशन आता है, करुणा ध्यान रहता है, प्रश्न है। ये जो हायर लेवल के जो मेडिटेशन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर की जो नकारात्मक

0: भावन है, जो इमोशंस है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस लाते हैं, कल्टीवेट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, क्षमा हो गया, तो इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरह का जो ध्यान का जो प्रकार है इसको हम लोग करुणा ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से कुल आप मोटे मोटे रूप से तीन प्रकार आप बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों ने भी इन प्रकारों को प्रमाणित किया है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के ध्यान में आपके जो न्यूरोनल सर्किट्स है, जो ब्रेन की जो गतिविधियां अलग अलग होती हैं, तीनों के ही जो फल भी अलग अलग होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी ध्यान को तीन भागों में बांटा गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें युवाओं के लिए, जो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, और उसके बाद रोजगार के लिए जो स्ट्रगल कर रहे बच्चे होते, तो उनके लिए ध्यान का कितना महत्व है?
0: बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी सूचित करना चाहूंगा कि युवाओं को किस तरह का ध्यान कर देना चाहिए, मतलब मेडिटेशन कौन से प्रकार का करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको हम लोग जैसे बात की कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की जो कैटेगरी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हम इस पे देखें कि जो डिफरेंट जो अन्वेषण हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें देखा गया कि जब आप फंक्शनल MRI मशीन होता है जिसमें आपके ब्रेन की गतिविधियों को, फंक्शन को मेजर किया जाता है, तो उस गतिविधियों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकला कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को फोकस रहता है, श्वासों पर ध्यान दे, तो ब्रेन के एक हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसका भी डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया सक्रिय हो जाता है, और ऐसा देखा गया है कि यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उस समय उसकी जो तत्कालिक मेमोरी जो होती है वो उस काम को हेल्प करना चाहिए। तो वर्किंग मेमोरी है, अटेंशन है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो ऐसा देखा गया कि ये पार्ट जितना ज्यादा एक्टिव होगा आपका
1: जी,
0: तो उतना ज्यादा आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। तो युवाओं को बहुत जरूरी है कि उनके अंदर अटेंशन होना चाहिए काम के प्रति, वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन करने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि प्रतिदिन युवाओं को कम से कम 10 से 15 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही इससे उनकी जो जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक प्रकार से उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं अगर आप उसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, बुद्धि उनकी प्रगाढ़ होती जाती है। और ये सारी चीज में रिसर्च पेज बता रहा हूँ आपको, सारी चीज अनुसंधान पे ऑलरेडी ये चीज प्रूव हो चुके हैं कि ध्यान करने से ब्रेन में अल्फा रिदम्स आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका स्राव होने लगता है, तो इस तरह की गतिविधियां होती है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: एक और गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये भी मेरे बहुत ही दिल के करीब संगीत है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, उनके अंदर जो है एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। वो उनका ध्यान जो है अभी वर्तमान और आधुनिकता की ओर रहता है, जिससे वो तनावग्रस्त रहते हैं। अधिकतर हम देखें जब बात करते हैं हम विद्यार्थियों की, तो योग और ध्यान उनकी कैसे मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल, योग और ध्यान तो निश्चित ही मदद करेंगे, लेकिन मैं उनके लिए एक सिंपल सा एक बोलते नहीं कि निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो एक निमोनिक्स देना चाहूंगा। 3T फंडा, 3T। तो ये 3T फंडा कहने का मतलब ये होता है कि एक टी होता है थॉट्स मैनेजमेंट, एक टी होता है टंग मैनेजमेंट, एक टी होता है टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आज का युवा वर्ग थॉट्स को मैनेज कर पाए, तो थॉट्स का जो मैनेजमेंट है वो आपके ध्यान के द्वारा हो पाएगा, टंग का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा, टाइम का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा। क्योंकि आप ये ध्यान करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपनी ऊर्जा, ताकि भाई काम तो बहुत सारे हैं, आज का युवा वर्ग भटक रहा है क्योंकि उसका भटकाव है डिस्ट्रेक्टेड माइंड के द्वारा, उसका माइंड उसको बहुत डिस्ट्रेक्ट करता रहता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो यदि वो फोकस रहे और ध्यान करते रहे जीवन में प्रतिदिन, तो निश्चित ही जब वो फोकस माइंड में रहेगा तो भटकाव जो उसको भटकाते हैं उससे वो कम दिग्भ्रमित होगा वो, और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाएगा वो। मेरा यही कहना है कि भाई उनको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, और ऊर्जा कहाँ पर कैसे लगाना, कितनी लगाना है, ताकि ऊर्जा तो आपको निश्चित ही लगेगा हर चीजों में। आप गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा देंगे तो थक जाएंगे बहुत जल्दी, जहाँ लगाना वहां आप नहीं लगा पाएंगे।
0: जी जी जी, डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में भी कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं कामकाजी होती हैं, और कुछ महिलाएं गृहस्थ और कामकाजी दोनों होती हैं। और जब हम योग और आसन और प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं, तो इसका जो लाभ हमारी महिला कैसे ले सकती हैं?
1: उनको भी प्रतिदिन कम से कम अपने जीवन में कुछ आसन का अभ्यास, जैसे कि मैंने आपको बताया उष्ट्रासन बहुत बढ़िया आसन है, विपरीत करनी दूसरा आसन है, आपका जो तीसरा सेतुबंध आसन है, तो इस तीन तरह के आसनों को अपने जीवन में वो शामिल करें, कुछ समय लगाएं, और थोड़ा बहुत समय अपना प्राणायाम के लिए लगाएं, लंबी गहरी सांसें लें, डायाफ्राम ब्रीथिंग करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, धामवीर प्राणायाम करें, और लास्ट में थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करें। तो निश्चित ही इस तरह के अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने से उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी, हर तरह से वो काम एंड क्वाइट रहेंगे, और परिवार को भी अच्छे संभाल पाएंगे, अपने जो भी

0: चीजों को भी टाइम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा इस चीज़
1: का। जी जी जी, डॉक्टर साहब कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम ध्यान और योग की बात करते हैं तो इस पे हमारा खान पान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो योग और ध्यान से जुड़े खान पान की आदतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं बिल्कुल, जैसे हम खान पान के विषय में हम कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है, तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, तीन तरह के भोजन को हम आयुर्वेद के हिसाब से बांटते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो जो आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यदि आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, राजसिक कर रहे हैं, तो फायदा तो होगा लेकिन फायदा होने की जो प्रायिकता कम हो जाएगी आपकी। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करके आप योग अभ्यास कर रहे हो तो उसकी फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से ही मेरा कहना है कि सात्विक जो भोजन होते हैं, हल्के भोजन होते हैं, आप वो करें अपने जीवन में, निश्चित ही उस सब चीजों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
1: जी जी, बहुत अच्छी और लाभकारी जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपने दी है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक बार पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी ने आज मुझे इस कार्यक्रम के बुलाया और उन्होंने मुझे इस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आकाशवाणी रायपुर का, धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर। डॉक्टर मृत्युंजन राठौर से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे, भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी
1: के रायपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
3: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है।

पर सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वाज से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने

से हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45।
2: विविध भारती कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 10:10 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत का, आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 10:30 पर। सुबह 11 बजे सुनिएगा विविध भारती कार्यक्रम। 11:55 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय होगा हुनरमंद हाथ, खुद का व्यापार, आर्थिक आजादी की ओर बढ़ती नारी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। और चर्चा का विषय होगा बरसात में कैसे करें

त्वचा की देखभाल। साथ ही सुनेगा क्रम शासकीय योजना और भेंटवार्ता। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत हम पेश करेंगे शाम 6:20 पर, 7 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:20 पर होगा किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा खरीफ में दलहन और तिलहन अपनाएं, ज्यादा लाभ कमाएं, खेत बचाओ अभियान। और नसीहत में चर्चा का विषय होगा वैज्ञानिक विधि से खेती अपनाएं, अपने को समृद्ध बनाएं। साथ ही सुनेगा क्रम आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम पेश करेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:00। 10:00 हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध संगीत कार्यक्रम। और रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय राग पर आधारित कार्यक्रम सूर्यामनी। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal की Hugli जेला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को

0: प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: .7 MHz पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे शान की आवाज में।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई ये गजल, रचना है कातिल शिफाई की।

के गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं। पेश है आपके पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं लगान फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है एआर रहमान ने और आवाजें हैं सुखविंदर, उदित नारायण और अलका याग्निक की। पसंद करता है बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा

शारदा दामिनी वर्मा, फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट बिहार से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या ललन मिश्रा, बीके मिश्रा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू, लल्लू पंडित, इसी गीत के लिए हमें ईमेल किया। माँ महामाया चौक मेघापारा से राम कुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, जिसे संगीत से सजाया था जतिन ललित ने और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। पसंदकर्ता जतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, शबाना आलम। सिराजपुर गणेशपुर से हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल। धंधाग्राम सुकरी कला से हमारे श्रोता हैं अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक,

0: हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अगला पत्र हमें लिखा है चार मीनार चौक गंडई बनरिया से दरिया नमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, शिवाजी चौक मुंगेली से चंदू, नीता, गुंजन, कमल, रूपवानी, ताजपुर मोरवा से कारी राय, कारी, मीना, पुंजराज आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, महादेव घाट अमलेश्वर से हमारे श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। ये सभी श्रोता साथी सुल्तान फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने और आवाज़ है राहत फतेह अली खान की।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: श्रोताओं, यदि आप भी अपनी फरमाइश पर गाने सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन नंबर है 496001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए सब्जेक्ट में लिखिए कार्यक्रम का नाम, आपकी फरमाइश, गाने के बोल, और हमें श्रोता रायगढ़ @gmail.com पर मेल करिए। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, कसूर फिल्म से, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीतकार है समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, पसंदकर्ता नर्मदा धाम सुरसुली जिला बालोद से कैलाश यादव, सुरेश, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतिक मीका बीरक, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, सांगी तराई से शिव कुमारी, राम दुलारी, पंकज, साक्षी दिपेर, संजय श्रीवास, मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु और ऋषभ सिंह। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु, अंशु गुप्ता, इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चैतन दास, शीतल, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है, ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सकता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और

0: एस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देवबर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रत्ना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देवबर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देवबर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देवबर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में।

21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

0: यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955।
1: झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल।
0: सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था ये।

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दिग दिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो।
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जानी माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे

पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान। सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा है। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं।

0: इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे, वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई है और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुन

0: मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: सख

0: अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया

0: जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। वहीं कल देर शाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर में पुनर्वासित युवाओं से मिले और उन्हें गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में मिल रही सुविधाओं, प्रशिक्षण और रोजगार की जानकारी ली। इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। रायपुर जिले में 1381 बूथों पर 3,45,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा दी जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिनगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा को सुपोषण वृक्ष के रूप में पहचान मिल चुकी है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और फूल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के संबल केंद्र में होने वाले इस इंटरव्यू के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। 8वीं उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रूपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देवबर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं। और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत, गुलशन बावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोज़ाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे वो। तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें, आज की इबारत है यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया कभी धूप तो कभी उछैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं

जहाँ समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है, हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है, हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हमसफर बन गए और जैसे पति पत्नी, कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले। कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई जो चीज़ें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है? ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

0: ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताज़ा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगीत साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज़्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे, और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती ज़रूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारमा छूटता है, साथ ही संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवरत चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है?
1: तेरे

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियाँ, क्योंकि आमतौर पर सखियाँ तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहाँ पहुँचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है, हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तेज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयाँ थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फ़ोन पर कॉन्टैक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के ज़रिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के ज़रिए या एक दूसरे के व्यवहार के ज़रिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज़, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते ज़माने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफ़र गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफ़र की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी इबारत, कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहाँ एक पल थम के रोना होगा, एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो, संगीत हो, राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में, एक एक पंक्ति में, एक एक गीत में। आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है। जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र, यार, दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत मज़ा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर

को भी लेकर एक कहानी कि जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजी ने, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आपसे जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफ़र की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नज़र आती है लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफ़र की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफ़र की पोस्ट नज़र आ जाएगी और आप वहां कमेंट के ज़रिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहाँ पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मज़ा आया होगा आपको मिलकर, और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो

जान सकता है, वो दोस्त ज़रूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है, उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियाँ नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के ज़माने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से, आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज की किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में, कि कहीं कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले, और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफ़र। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में। इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का कह रहे हैं कि सर्व कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है, लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे कौर साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं। समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे कौर साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते कि मैंने आपको अभी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ शब्दों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज़ में है।

0: तो कभी छा,
1: कभी धूप कभी छाव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, चित्रगुप्त का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, संगीत किसकी आवाज में गीत है हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहाँ उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर

और हमारा लकड़ी वाला था, वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फ़ोन आना। वही हमारे एक साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफ़र की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं हमारे एक साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियाँ आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने ज़माने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फ़ोन उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं। हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में और वहाँ उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहाँ पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ, फिर हम वहाँ से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहाँ पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त किसी 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई और हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव के काम से गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें और आपकी एक साथी विविध

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

0: गया।
1: माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

लोग अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नज़र में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुँचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास

0: प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौड़ में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक

0: महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: प्यार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गाँव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता

ने ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोहराओ अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओहो भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो ये है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: Really?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता।

0: हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
0: तो तुम उन्हें जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
0: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
0: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है। मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
0: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
0: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
0: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: शुक्रिया।
1: मुझे आज्ञा दो।
0: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों उतार के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।

0: क्या बात है मामा जी।
1: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम बड़े मीरासदार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
0: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
1: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखे एक लड़की हो ये मत भूलना।
0: हाँ हाँ आप चिंता ना करें मामा जी।
2: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
0: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
2: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
0: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
3: डॉक्टर साहब उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस ज़ादे कुमार सामी जी के दुश्मन का आदमी है।
0: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई, इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
3: एक ही करके पूछिए ना।
0: कहो तो।
3: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
0: ठीक है फिर।
3: आपको तुरंत ले आने को कहा।
0: क्यों वो यहाँ नहीं आ सकते?
3: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
0: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
3: आप नई आई हैं इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
0: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब मैं चलूं?
0: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
2: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
3: डॉक्टर साहब वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
0: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
3: ओफो आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
0: नागमणि तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
3: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
0: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
3: याद रखिए ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
0: नागमणि
3: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
4: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
1: नायकम जी मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
4: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भर्ती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
1: नायकम जी ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
4: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
0: चिंता ना कीजिए मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
1: भारती तुम?
4: अच्छा तो ये बात है,
1: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
0: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
1: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गाँव के बड़े आदमी है।
0: मामा जी मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
4: सुना आपने?
1: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।

0: ठीक है, देख लेंगे इसे भी। इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
1: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
2: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
1: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ। इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
2: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
1: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।
2: क्या, क्या हुआ मामा जी?
1: सीनो,
2: मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
1: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
2: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: हेलो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा?
0: अरे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
0: मजाक वजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
1: जानम्मा
0: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा।
2: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
0: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
0: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा
0: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
1: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
0: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
1: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
0: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
1: तो
0: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
1: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
0: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
0: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
0: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं।

0: अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बक्स ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बेटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
6: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नानी, तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
6: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए डॉक्टर।

0: आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
0: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
2: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
0: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
1: चलिए।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया

0: तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
1: अच्छा।
0: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते थे?
0: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे?
0: यही काम करते,
1: ये संघर्ष जो,
0: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
1: हाँ।
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
1: अच्छा।
0: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन नहीं था।
1: इतना पैसा मिल जाता था?
0: इतना पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया
1: जी, सपने देखने जैसा,
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं। पहले
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: बताइए।
0: और वो गाना है बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूबा।

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: 200-250
1: गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था।
0: हुँ.
1: लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का है, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
0: ऊर्जा आ जाती थी।
1: हाँ, लगता था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन होता
0: कि कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी
0: होगा।
1: हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन देता था
1: वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के प्रति, ना इस
1: हो
0: दीवानगी में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी, बताइए। क्योंकि ये मेरे कैरियर का, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए, जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया और

0: हमारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
1: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
0: नहीं,
1: वो कोई और था।
0: वो कोई और था।
1: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी, जी।
1: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
1: अच्छा।
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा।
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोंपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे बहुत शानदार, तो, और लेजेंड से
0: उनका
1: थे
0: तो क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी,
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बम्बई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी,
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत।

0: तो उनका 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
0: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
0: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
1: अच्छा?
0: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं, तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था। एकदम बेकार, मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली, लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके। लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था
1: जी।
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था
1: जी, जी।
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: दिया।
0: हाँ। और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा, मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है,
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे।
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे। सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा।
1: हाँ।
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम,
1: तेरे
0: की।
1: नाम की,
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
1: क्योंकि तुम वो हटके।
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे। तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे।
1: अच्छा।
0: अपने गाने पे।
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई, और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका,
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर है।
0: इसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के

0: बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
1: बहुत
0: ओढ़ली पैंतरा
1: खूब बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम
0: था।
1: था ये,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी जी
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
0: जी
1: से
0: जी
1: में गवाया,
0: जी
1: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
0: ये
1: कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी हैं, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूँगा करूँगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की, उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला
0: गया
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है,
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं, थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो, मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं,
1: अच्छा
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी अदरवाइज वो नहीं मिलेगी, हाँ तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं गा
0: सकती,
1: पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फ़ोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा ख़ास है और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो,
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है, तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है, तो उसने कहा सर काजोल, मैंने कहा यार गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है, क्या मतलब, तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा,

0: बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ खासकर, काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फ़ोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला, मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज़ आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन।
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ,
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
1: कॉन्वेंट
0: का है,
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी,
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही जब दूसरा गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो

0: इनको ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा, दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी?
1: हाँ
0: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा, तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये
1: जी
0: गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ।
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: हट के।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
2: क्यों आए,
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया

0: इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
1: अच्छा
0: दादी गाएगी भी।
1: अच्छा
0: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा, क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी, जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया,
1: क्या बात है,
0: और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक।
1: अच्छा,
0: पहले सिंगर तो मिले।
1: तो
0: जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं। और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं। उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में? और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा? बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी।
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी,
0: यहाँ तक तो दादी गाती है।
1: हाँ।
0: अब लड़का क्या जवाब दे? हाँ। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा। तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी,
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म हमरा।

आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मुड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चौरपानी, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराज, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे

0: हमर हाथी हमर गोट।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम वनिता विहार। कार्यक्रम वनिता विहार में आज चर्चा का विषय रहेगा हुनरमंद हाथ, खुद का व्यापार, आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ती नारी शक्ति। साथ ही सुनिए का चर्चा बरसात में कैसे करें त्वचा की देखभाल, और इसके अलावा आप सुनेंगे शासकीय योजना PM स्वनिधि योजना। भेंटवार्ता आप सुनेंगे आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण का महत्व, और साथ ही सुनिएगा आओ मिलकर हाथ मिलाएं, देश से नशे का नामो निशान मिटाएं। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:00। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुनेंगे शाम 6:45 से आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। शाम 7:00 हम लेकर आएंगे कुछ अच्छे यानी कि लोकप्रिय यानी कि सदाबहार गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसानवाणी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा खरीफ में दलहन और तिलहन अपनाएं, ज्यादा लाभ कमाएं, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ये बातचीत आप सुनेंगे। साथ ही सुनिएगा नसीहत वैज्ञानिक विधि से खेती अपनाएं, अपने को समृद्ध बनाएं। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर, और कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे रीना राजन, रमन राजन और फिरदौस राजन के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00 से। हमारे केंद्र से विविध संगीत सुनिएगा रात्रि 10:00, और यदि आपकी रुचि शास्त्रीय संगीत में है तो सुनिएगा जरूर कार्यक्रम सूर्यामनी रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
2: साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: पॉप गीतों के कार्यक्रम पॉप टाइम में अभी आपने सुना सचेत टंडन और साथियों की आवाजों में ये गीत।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति

0: चांद सिद्धवानी और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
8: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा

ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: पॉप गीतों के कार्यक्रम पॉप टाइम में अभी आपने सुना राहुल सोलंकी और साथियों की आवाजों में ये प्यारा सा गीत।
1: मनोरंजन, शिक्षा और

सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

पॉप गीतों के कार्यक्रम पॉप टाइम में अभी आपने फो मिस्टर डॉस और साथियों की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत सुना और इसी के साथ ही पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अब समाप्त होता है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वनिता विहार में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी प्रतिमा अजमानी। बहनों, महिला शुरू से ही शक्ति स्वरूपा मानी गई है। वो सरस्वती के रूप में बुद्धि देती है तो लक्ष्मी के रूप में धन धान्य देती है। हम महिलाएं घर पर रसोई घर को तो संभालती हैं, साथ ही अपने अंदर छिपे गुण को पहचान लें तो हम रसोई की ही तरह घर के आर्थिक स्तर को भी बढ़ा सकती हैं। बहनों, जब कोई महिला अपने गुणों को निखार कर उसे व्यापार का रूप देती है तो ना सिर्फ हमारा व्यक्तित्व बदलता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास में भी कई गुना वृद्धि होती है। इसके साथ ही हम घर की चुनौतियों के साथ ही बाजार में आने वाले नए बदलाव और प्रतिस्पर्धा के दौर का सामना करने में सक्षम हो जाती हैं। हम महिलाएं जब अपने शौक हुनर को व्यावसायिक रूप दे देती हैं तो हमारा खुद का व्यापार हमें कमाई दे सकता है और हम आर्थिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनती हैं। बहनों, इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 जून यानी आज इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ये MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है। बहनों, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में वैश्विक तौर पर मान्यता देने के लिए घोषित किया गया। ये उद्यम दुनिया में कुल व्यवसाय का 90% और रोजगार का 50% हिस्सा बनाते हैं। बहनों, भारत सरकार इस अवसर पर उद्यमी भारत MSME दिवस जैसे कार्यक्रम का आयोजन करती है जहां नए विकास लक्ष्य और योजनाओं पर चर्चा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित MSME की मुख्य थीम छोटे व्यवसायों को सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में सशक्त बनाने पर केंद्रित करती है। बहनों, भारत के परिप्रेक्ष्य में इन उत्सवों और सम्मेलनों की मुख्य थीम MSME के लिए व्यवसाय उद्यमियों को जोड़ना रही है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाना है। बहनों, 2026 फोरम का आयोजन MSME की भावी पीढ़ी के विषय के तहत किया गया है जिसमें AI संचालित अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की भूमिका पर वैश्विक चर्चा केंद्र में मानव केंद्रित उद्यमिका को रखा गया है। बहनों, MSME के लिए कोई भी व्यक्ति या व्यवसायिक इकाई पात्र है बशर्ते इनका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक ना हो और निवेश 50 करोड़ तक हो। बहनों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नारी अपने तक सीमित नहीं है बल्कि परिवार और समाज की मुख्य धुरी बन चुकी है। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। अब हम महिलाएं घर की आय में समान रूप से योगदान दे रही हैं जिससे घर के मुख्य निर्णय लेने में हमारी भूमिका बढ़ रही है। बहनों, हम घर से लेकर बड़े स्तर पर अपनी रुचि और कौशल के अनुसार टिफिन, ब्यूटी पार्लर, हैंडमेड क्राफ्ट्स और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन, बुटिक जैसे काम कर सकती हैं। घर पर कुकीज़, चॉकलेट, केक बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए बेच सकते हैं। पारंपरिक और कभी ना ख़त्म होने वाला मसाले पापड़ उद्योग भी इसमें प्रमुख भूमिका रखता है। आधुनिकता के दौर में डे केयर सेंटर, इवेंट प्लानिंग जैसे काम भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं। इस तरह बहनों, हम महिलाएं अपने गुणों को अपनी आत्मनिर्भरता का तरीका बनाकर बदलते ज़माने में अपने पैरों को मजबूती से जमा सकते हैं।

0: से हमारा परिवार भी ऊंचाई के नए स्तर पर पहुंच सकता है। बहनों, अब समय है एक भेंट वार्ता का, तो आइए सुने आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण का महत्व इस विषय पर नीतू गोयल से रश्मि शरण की बातचीत।
1: जिस तरह से अभी वातावरण में परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है और सभी प्राणी हालाकान हो रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण के लिए अभी से जागरूक हो जाएं और कुछ अपने कदम को बढ़ाएं इसको संभालने के लिए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए। और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण का महत्व। और आज हमारे साथ हैं नीतू गोयल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद रश्मि जी हमको आमंत्रित करने के लिए, और मेरे सारे श्रोतागण को नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण का क्या संबंध है, क्योंकि हम आधुनिक जीवन शैली को तो हमने अपना लिया है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से हम महसूस कर सकते हैं। कई चीजों में हमें आराम जरूर है, लेकिन जो उसका प्रभाव है या दुष्प्रभाव हम बोल सकते हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको किस तरह से संतुलित किया जाए।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रश्मि जी। आजकल ये चीज हम लोग को, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसका क्या है, आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
2: तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण, तकनीकी विकास और उपभोग की संस्कृति ने जीवन को आसान तो बना दी हम लोग के लिए, लेकिन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। इसीलिए आज के समय में पर्यावरण संरक्षण न केवल प्रकृति के लिए बल्कि मानव अस्तित्व और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है
1: जी। बिल्कुल,
2: तो इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ को बचाना भी पड़ेगा।
1: और जहाँ तक हमने बात की आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण का संबंध, तो इसको हम किस तरह से और क्लियर कर सकते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में हम पर्यावरण को साथ लेके कैसे चलें।
2: आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण को साथ लेकर आप ऐसे चल सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो अभी हम देख भी रहे हैं पेट्रोल और डीजल का संकट चल ही रहा है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और आप देख भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है आसपास, देखिएगा काफी स्कूटर आपके आसपास,
1: सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: हाँ, बढ़ावा दिया जाए, कार को पुल करिए, जहाँ पे एक अकेले जा रहे हैं,
1: सार्वजनिक
2: वाहन का, मेट्रो, इन सब का यूज करने से हमारे पर्यावरण काफी संरक्षित होगा
1: जी। मतलब हम कहने का तात्पर्य है कि हर कोई एक एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण का महत्व क्या है, क्योंकि हम जैसे हमने शुरू में भी बात की कि हम आधुनिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है उनको अभी भी हमें संभाल के रखना बहुत जरूरी है, तो उसे हम कैसे संभाल सकते हैं।
2: ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जरूरी है हमारा ये दोनों का बैलेंस बना रहना, और इसका बहुत महत्व है। पहले बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण
1: जी,
2: जब पर्यावरण सही रहेगा तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
2: तो उसके
1: और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे आर्थिक रूप से।
2: जी जी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए है कि जीवन शैली में प्रदूषण है, तनाव है, अस्वस्थ है, खान पान से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो हमारा अगर स्वच्छ पर्यावरण रहेगा, शुद्ध हवा रहेगी, पीने का साफ पानी रहेगा, तो हम बीमारियों से बच पाएंगे और हमारी जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो पाएगी।
1: और इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतारें इसको।
2: इसके उतारने के लिए तो ये है कि आप जैसे घर में, सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं, तो घर में जैसे आप प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, तो कम से कम उपयोग करें, और कपड़े के बैग्स आते हैं उनका उपयोग करें,
1: स्पेशली सब्जी लेने जाते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, तो सही बोला,
1: लेकर जाएं जैसे पहले करते थे।
2: हाँ, और हमारी जो लाइट है, पानी, ये बड़े कीमती चीजें, इनको हम बचा सकते हैं, वेस्ट नहीं होने दें,
1: जितनी जरूरत है
2: जी
1: उपयोग
2: बिल्कुल। और घर में जो हमारा टेरिस गार्डन है, इंडोर गार्डन है, इनको लगाएं
1: जी,
2: तो ये हमारे क्या पौधे लग भी जाएंगे, अच्छे भी लगेंगे, और हमारे घर का वातावरण भी स्वच्छ होगा, और हमें सब्जी है, कुछ फल है, फूल है, वो भी मिलेगा
1: जी।
2: तो आपको सब चीजों में अच्छा ही आपके लिए, और घर भी बहुत सुंदर दिखेगा
1: जी। बिल्कुल, और जब घर सुंदर दिखता है तो हमें अच्छा भी लगता है, जब माहौल अच्छा रहता है तो हमारा तनाव भी कम होता है। पर्यावरण सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बात होती है कि हम शुरू कैसे करें।
2: प्रार्थना, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले ये है कि छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लास्टिक,
1: वो
2: बिल्कुल आपको,
1: क्योंकि प्लास्टिक ऐसी समस्या है जिसको डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है
2: जी।
1: तो उसको हम जितना कम उपयोग करें उतना
2: अच्छा है। और

0: और पानी जो मैंने बोला कि उसकी बर्बादी होती है, अगर हमको यूज नहीं हो रहा है तो हम नल बंद कर दें, लाइट पंखे बंद कर दें
1: जी।
0: और जो मैंने बोला दैनिक हम लोग की जो चीजें हैं रूटीन का, तो अगर हमें लग रहा है कि हम पास में जाना है तो पैदल जा सकते हैं, नहीं है तो साइकिल का यूज करें और कार पुल करें
1: जी,
0: इलेक्ट्रिक वाहनों से चलें। तो ये इससे ही हमारा छोटे छोटे चीजों से ही पर्यावरण में सुधार होगा। और अपने घर में टेरिस गार्डनर इंडोर गेम लगाएं, जिससे हम हमारा पर्यावरण में सुधार हो।
1: और इसकी जागरूकता कैसे लाई जाए, क्योंकि हम बातें तो करते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन पेड़ लगा भी देते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो पाती। तो कम से कम एक आदमी तो जो एक पेड़ लगाए उसका जीवन भर देखभाल करे, कैसे इस बात को हम लोगों तक पहुंचाएं।
0: पेड़ एक चीज आपने बोली, ये सबसे अच्छी चीज ईश्वर ने प्रकृति की रची है। अगर आप पेड़ लगा देंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उसको पानी और वो देना। एक बार जब पेड़ लग जाता है नीचे तक जड़ उसकी फैल जाती है, जैसे बरगद और पीपल आपने सुना होगा, तो वो सालों साल लगे रहते हैं। तो इस तरह के हम पेड़ लगाएं छायादार और हमको उसकी देखभाल भी कम करनी पड़े और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे।
1: शुरू में कम से कम तो ध्यान दे कि
0: शुरू में वो थोड़ा सा तो सबको लगना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने आसपास पेड़ लगाएं और जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और पेड़ों से की वजह से जितने पेड़ रहेंगे बारिश अच्छे से होगी और सब चीज बढ़िया से रहेगा। हम लोग
1: प्रकृति ने अपना एक संतुलन बना के रखा है और हमने कहीं ना कहीं उसे असंतुलित कर दिया है
0: जी।
1: तो उस संतुलन को कैसे बनाया जाए?
0: उस संतुलन को बनाने के लिए वही है कि हमको वही प्राइमरी जो चीजें हैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे किस चीज की बनी है। जब हम चीजें खरीदेंगे नहीं प्लास्टिक की तो बनना भी कम हो जाएंगी
1: जी।
0: हम ऐसी चीज जो रिसाइकिल
1: हमारे उत्पादन
0: बिल्कुल आप सही बोले, तो इस तरह से चीजों का उपयोग करेंगे और कुछ कुछ हम जो गार्डन में लगा रहे हैं हम वो भी लगाएंगे यूज करेंगे, तो उससे काफी पर्यावरण में हम लोग को पहल मिलेगी। और ये मैं कहना चाहूंगी जैसे मान लीजिए आप लोगों का जन्मदिन है कुछ है तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे श्रोतागण से एक पौधा जरूर लगाएं।
1: बिल्कुल
0: बस यही कहना चाहूंगी मैं चार लाइनें कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम पर्यावरण की रक्षा धरती की सुरक्षा।
1: बिल्कुल, और सबकी सांसें अच्छे से चलती रहें और स्वच्छ वातावरण में चलती रहें, यही हमारी भी कामना रहती है। बस इसके लिए थोड़े प्रयास की जरूरत है और आप हमारे स्टूडियो में आई और एकदम सरल शब्दों में हमें समझाया कि किस तरह हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, महीनों की तपती धूप और गर्मी के बाद जब पानी की बूंदें फुहारों के रूप में ज़मीन पर पड़ती हैं तब हमारा भी तन और मन खुशी से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे जीवन को खुश होकर जीने का एक कारण और मिल गया। बरसात में नमी के कारण वातावरण में गीलापन और त्वचा में चिपचिपाहट प्रारंभ हो जाती है जिसमें त्वचा में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मैंने कुछ सामान्य से परिवर्तन अपनी दिनचर्या में कर लिए जाएं तो हम अपनी त्वचा को भी इस मौसम में स्वस्थ और चमकदार रख सकते हैं। बहनों, त्वचा में नमी और पसीने के कारण होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए दिन में दो बार साफ करें। इसके लिए हम सौम्य फेस वॉश या घरेलू रूप से दही बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे रोम छिद्र साफ होंगे तो मुहासे नहीं होंगे। मैंने चिपचिपे मौसम में हल्का जेल आधारित मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चाहिए। बादल होने पर हम कई बार सनस्क्रीन का उपयोग ज़रूरी नहीं समझते। सच तो ये है कि यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बारिश के मौसम में भी बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। बहनों, बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन और बेजान रंगत जैसी समस्याओं से बचने के लिए मृत कोशिकाओं को हटाने और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए एक या दो बार हल्का स्क्रब सप्ताह में किया जाए तो ये त्वचा को रोम छिद्र बंद होने की समस्या से बचाकर स्वस्थ रखता है। बहनों, जब कभी बारिश में भीग कर आए तो घर आने के बाद एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश से चेहरा साफ करके स्नान अवश्य करना चाहिए जिससे बैक्टीरिया और दूसरे संक्रमण का खतरा दूर हो जाता है। मैंने शरीर से टॉक्सिन

बाहर निकालने के लिए दिन में 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। साथ ही तले भुने भोज्य पदार्थों का ज़्यादा उपयोग नहीं करें। बहनों, अपनी दिनचर्या में भी कुछ उपाय बारिश के इस मौसम में ज़रूर अपनाने चाहिए, जैसे गीले तौलिए या साझा तौलिए का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये नमी को सोख लेते हैं और फफूंद पनपने का मौका देते हैं, जिससे चिकित्ते और संक्रमण हो सकते हैं। चेहरे और शरीर के लिए हमेशा साफ और सूखे तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। तो बहनों, अगर हम मानसून के इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो नियमित स्किन केयर रूटीन अपनाकर त्वचा की सफाई, हाइड्रेशन और सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए इस बारिश, चिपचिपी त्वचा को अलविदा कहकर स्वस्थ और चमकदार त्वचा के साथ मानसून का आनंद लें। और अब समय हो चला है इस प्यारे से गीत का, तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अपना काम करना स्वयं को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। कई बार धन की कमी होने के कारण ये सपने केवल मन में ही रह जाते हैं। ऐसे में सच्चे मित्र की तरह एक योजना हमारे सामने आती है, जो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जून 2020 में शुरू की गई थी, और उस मित्र का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। बहनों, छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन के द्वारा हम आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, ताकि रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करा सके। इस योजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लागू किया जाता है। मैंने इस योजना से घूम घूम कर दैनिक उपयोग की वस्तुओं, खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, रेडी टू ईट फूड शामिल हैं। इसमें नाई, मोची, लॉन्ड्री की दुकान भी शामिल है। इसमें विक्रेताओं को क्रमिक ऋण किश्तों के माध्यम से 15,000, 25,000 और 50,000 तक के बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत ब्याज, सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और पात्र विक्रेताओं के लिए 30,000 रुपये तक UPI लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिए जाते हैं। बहनों, औसतन ऋण स्वीकृति और प्रोसेसिंग में लगभग 23 दिन का समय लगता है। इस प्रकार पीएम स्वनिधि योजना से 46% लाभार्थी महिलाएं हैं। हम भी इस योजना से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार अपने सहयोग के द्वारा हम सभी को ये मौका देती है, ताकि ये लाभदायक और आसान योजना सभी के काम आ सके। बहनों, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अनेक प्रयास करती है, योजनाएं चलाती है, जिसकी मदद से हम धन अर्जित करते हैं और आज के आधुनिक जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। बहनों, आज हमारा समाज आधुनिकता के दौर में रच बस चुका है। ये नया दौर अपने साथ कई फायदे और कई नुकसान भी लेकर आया है। इन नुकसानों में से एक है नशा करना। बहनों, नशा एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती है, जिससे शारीरिक, सामाजिक स्तर पर परेशानियां बढ़ती हैं। नशा परिवार और आसपास के माहौल को प्रभावित करता है। नशीली दवाओं, शराब, तंबाकू आदि का सेवन कलह और सामाजिक पतन का कारण बनता है। नशे को मिटाने के लिए जागरूकता, सही परामर्श और आपसी सहयोग सबसे अहम है। पीड़ित व्यक्ति को परिवार का प्यार, खेल, योग में व्यस्तता और नशा मुक्ति केंद्र का सहारा देकर नया जीवन दिया जा सकता है। नशा करने वाले को अपराधी समझने के बजाय बीमारी का शिकार समझें, तो हम उसके तनाव और अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। सामाजिक स्तर जैसे गांव, मोहल्ले पर समूह बनाएं, जहां नशा या परेशानी संबंधित बातों पर खुले मन से चर्चा की जा सके और पीड़ितों की मदद हो सके। बहनों, प्यार अपनेपन में वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुर्गुण को दूर कर हमें पीड़ित व्यक्ति को सही रास्ते में लाने में मदद अवश्य करता है। साथ ही सकारात्मक परिणाम भी मिलने की आशा बढ़ जाती है। तो इसी सोच के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत।

0: महिलाएं अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी वनिता विहार एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से

0: देशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 पर हमारे रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे हिंदी में शाम 6:45 से। शाम 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा खरीफ में दलहन और तिलहन अपनाएं, ज्यादा लाभ कमाएं। साथ ही सुनिएगा नसीहत, वैधानिक विधि से खेती अपनाएं, अपने को समृद्ध बनाएं। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच। आज का मंडी

0: अब और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। विविध संगीत हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण होगा सुबह 6:10 पर। कार्यक्रम कृषि चर्चा हम लेकर आएंगे सुबह 6:30 पर। रामचरितमानस सुनिएगा सुबह 6:40 पर। देशगान कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:50 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। सुबह 7:35 पर आप सुनेंगे झरोखा, इसमें जानकारी देंगे भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव, उनकी जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर का प्रसारण होगा सुबह 7:45 पर। बाल सभा आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे सुबह 9:00 से लेकर 9:10 तक, 9:30 से लेकर 9:55 तक और दिन में 12:00 से लेकर शाम 5:00 तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन कार्यक्रम मन की बात आप सुन पाएंगे दिन में 11:00 से, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी संस्करण रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से, जिसे आप सुन पाएंगे दिन में 11:30 से। 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। ये थी जानकारी आज के और कल के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज बस इतना ही। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर मा देश भर के 500 शहर और कस्बा मनमा विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। औ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले करही अपन विचार साझा। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर मा देश भर के 500 शहर और कस्बा मन मा विस्तार करे जाही। गुजरात मा भारत टैक्सी के शुभारंभ करत हुए श्री शाह ये पहल ला सरकारी क्षेत्र मा एक ठन क्रांतिकारी कदम बतेन। उमन कहिन कि भारत टैक्सी के उद्देश्य

0: तक मल्ला सीधा लाभ पहुंचा के निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना हरे। श्री साहर डेयरी उत्पाद ले संबंधित अमूल सहकारी अभियान के सफलता के घलो उल्लेख करें। प्रदेश में काली 28 जून ले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाए जाही। एकर तहत जन्म से लेके 5 बच्छर तक के 35,98,000 ले ज्यादा लैका मल्ला पोलियो के खुराक पिलाए के लक्ष्य रखे गए है। अभियान के संचालन पर 28,000 टीम मन के संग 57,000 ले ज्यादा वैक्सीनेटर तैनात करे गए है। अभियान के दिन छुटे हुए लैका मल्ला अवैया 2 दिन तक आने यानी 29 और 30 जून के घर घर जाके खुराक दे जाही। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत है बतायन कि दूरस्थ गांव वनांचल क्षेत्र शहरी बस्ती ईटा भट्टी निर्माण स्थल और प्रवासी और घुमंतु परिवार मन तक पहुंच के लेका मल्ला पोलियो के खुराक दे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून इतवार के आकाशवाणी के मन के बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले अपन विचार साझा करही। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम के 135वां एपिसोड होही। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सब्बो चैनल AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप में करे जाहे। संगे संग AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल मन में घलो एकर सीधा प्रसारण करे जाहे। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद क्षेत्रीय भाषा में घलो कार्यक्रम के प्रसारण होही। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होई ऊपर छत्तीसगढ़ में घलो 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। ये दौरान प्रदेश भर में सहकारिता ला बढ़ावा दे बर आने आने कार्यक्रम के आयोजन होही। रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। इमा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। सहकार मेला में सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल मन के प्रदर्शन करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता बतायन कि 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डहाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 ठन पैक्स मनमा गोदाम निर्माण काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काली 28 जून के नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्षता करही। 2 दिन के सम्मेलन में सब्बो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मन समग्र ग्रामीण विकास ऊपर विचार विमर्श करे बर सकलाही। बैठका में प्रमुख परियोजना मन के समीक्षा और ग्रामीण भारत बर भविष्य के रूपरेखा तैयार करे ऊपर घलो विचार विमर्श करे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हकीन है कि प्रदेश भर में वीर शहीद मन के स्मृति ला चिरस्थायी बनाए बर विशेष अभियान चलाए जाही। एकर तहत गांव मन में सामुदायिक भवन चौक चौराहा और दूसर सार्वजनिक स्थल मन के नामकरण शहीद मन के नाम में करे जाही। संगे संग जिन जगह में नक्सल हिंसा के बड़े घटना हुए है वहाँ उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारक मन के निर्माण करे जाही ताकि अवैया पीढ़ी शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान ले प्रेरणा ले सके। ये बात उमन काली कांकेर मा नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मन के परिजन मन ले मुलाकात के दौरान कहीं उन्हें उप मुख्यमंत्री है नारायणपुर मा पुनर्वासित युवा मन ले घलो मुलाकात कर उनला गांव के विकास मा भागीदारी निभाए के आह्वान करें। ये दौरान उमन युवा मल्ले पुनर्वास केंद्र मा मिलत सुविधा प्रशिक्षण और रोजगार के जानकारी लीन। उमन जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के बैठका में घलो शामिल हुईन और समाज के लोगन मल्ले माओवाद मुक्त बस्तर के नव निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए के आह्वान करें। उन्हें उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हा कांकेर जिला के ग्राम किसकोड़ो में जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन के जन समस्या ला सुनिन। उमन कहिन कि किसकोड़ो ला आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के आह्वान करें। महासमुंद जिला के बलौदा बाजार बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन लले के तैयारी तेज हो गई है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये परियोजना के अवैया चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करे के निर्णय ले गए है। ये निर्णय ये क्षेत्र में हीरा के वास्तविक भंडार के वैज्ञानिक आकलन कर ही और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन के मार्ग प्रशस्त कर ही। निर्णय के अनुसार बड़े व्यास के ड्रिलिंग ले किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार के सटीक आकलन करे जाही। एकर बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होही, जेकर आधार में व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करे के अंतिम निर्णय ले जाही। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाला ट्रैक्टर मन के सड़क में संचालन ऊपर रोक लगाए गए है। परिवहन विभाग नियम मन के उल्लंघन करैया मन ऊपर चालानी कार्रवाई के निर्देश दे है। ऐसन पहिया मन के उपयोग सिर्फ खेत में किसनहा काम बर करे जा सकत है। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर देगे है। ये योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित विद्यार्थी मल्ला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर ही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। ए बखत के अंक में जसपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग गाज गिर सकत है। पाछू 24 घंटा के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक हिस्सा में हल्का ले मध्यम वर्षा दर्ज करेगी। इसी बीच मौसम विभाग कहिन है कि अवैया 3-4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ समेत गुजरात मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ एक क्षेत्र में आगू बाढ़े के परिस्थिति बने हुए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया 2 बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले कर ही अपन विचार साझा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने सड़क फिल्म का गीत सुना, कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल के युगल स्वर में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के साथ।

0: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
2: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा।
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: आशिकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, रानी मलिक का लिखा हुआ और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ। आवाजें थी कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल की।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने साजन फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए दीवाना फिल्म का गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: और सराई पाली केंद्र है मीडियम वेव और FM बैंड पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्का

0: घी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की और उनसे गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की बैठक में भी शामिल हुए और समाज के लोगों से माओवाद मुक्त बस्तर के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम मर्दापाल स्थित कन्हार गांव में साप्ताहिक बाजार पहुंचकर ग्रामीणों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनजीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के ग्राम किसकोड़ो और बोड़गांव स्थित CAF कैंप में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में कल 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के संचालन के लिए 28,000 टीमों के साथ 57,000 से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। अभियान के दिन छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ VR भगत ने बताया कि दूरस्थ गांवों, वनांचल क्षेत्रों, शहरी बस्तियों, ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों तथा प्रवासी और घुमंतू परिवारों तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न

0: कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा।
1: 5 वर्ष सहकारिता विभाग के पूर्ण होने पर सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जून से प्रारंभ होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें विविध कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 9 बड़े गोदाम जो दिए गए हैं उनका वर्चुअली भूमि पूजन होगा और 7 दिन 2058 पैक्स में सारे जिला बैंकों में, सारे जिला मत्स्य बैंक और जितने भी वनोपज संघ है, बुनकर संघ है, दुग्ध संघ है, NCDC है, NCCF है, NAFED है, IFCO है, क्रिपको है, राज्य सहकारी संघ है, सभी संगठनों में पूरे 7 दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे।
0: महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा, चिंतलनार, पूर्ववर्ती और सिलगेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं से चर्चा की। श्रीमती राजवाड़े ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। वहीं श्रीमती राजवाड़े ने बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि माओवाद मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। NMDC CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस परियोजना के अगले चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत MTech, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीति

चुनौतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के सतत परिवर्तन के लिए शिक्षा और विकास दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों के सामाजिक उत्थान, सुरक्षा और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा बस्तर में विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा के बहेराडीह में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जांजगीर चांपा सहित विभिन्न जिलों के मशरूम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। महासमुंद जिला पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर रेहटी खोल के पास नाकेबंदी कर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही एक कार से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 25.5 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी के अधिकारी के साथ 20,70,000 रुपए ठगी होने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

FM 106.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए कारवां फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। मजरूह के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म हम किसी से कम नहीं से, मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। मजरूह के बोल हैं और आरडी बर्मन का संगीत है।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

संगी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ आप मन के संगी हर्ष, और स्वागत है सबो जिन के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में। और का राम राम कहो संगी हो, अभी आते च रहे गोट बात करे बर। तो हमर घर तीर के बबह कहिस कैसे बाबू, मौसम के का हाल चाल है, तो चपचपा जात है पूरा और पानी उनी गिरत नहीं है कके। तो मैं कहें बाबा, मौसम के हाल चाल तो हमन यहाँ आकाशवाणी ले बताते च रथन, लेकिन तू मन मेघदूत ऐप ले सीधा देख सकत हा मौसम के हाल चाल, जेमे ले मैं देख के बतात हूँ। जैसे देखा तो अभी अधिकतम तापमान है वह 38 डिग्री सेल्सियस, जो न्यूनतम तापमान है वह है 28 डिग्री सेंटीग्रेड।

जेन हवा में नमी रहते वो हर अधिकतम 78% रही से, मतलब बहुत ज़्यादा नमी है जेकरे कारण चिपचिपाहट वाला पूरा गर्मी लगत है, लेकिन वही है रात के या मझनिया के थोड़े कम होके 33% रह जाते। हवा के जिन गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले चलत है, और ओकर दिशा है वो हर है दक्षिण पूर्व गति। काहे कि सब जन जानते छन कि हमर छत्तीसगढ़ में जिन मानसून आते तेन हर दक्षिण पूर्व दिशा ले ही आते। अभी ओच कोती ले हवा चलत है और हमू मन अगोरा थन कि यही दक्षिण पूर्व के हवा है कब बादल मन ला घोर घोर के लाही और बढ़िया ले बरसाही। तो मेघदूत ऐप के बारे में बात करत रहे संगी हो, तो ये ऐप हर अतकी बढ़िया ऐप है हमर किसान मन बर ही बने हैं। एमे तो जतकी मैं बताए हूँ तापमान है, आर्द्रता है, हवा है, वह पता चलते छे। संगे में कृषि के जन सलाह है ओहू हर लगातार हमन ला एक क्लिक में मिलत रहते है, वो भी पूरा हिंदी माध्यम में। कोई अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा पढ़े के जरूरत नहीं है, हिंदी में सीधा सीधा साफ साफ लिखा है। जैसे मैं चाउर ला छुआत हूँ मैं, तो चाउर में वह बतात है कि भाई मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अभी कल परसों में बादल छाए रहे के संभावना है, और अधिकतम तापमान है वह अभी भी 34 से 35 और न्यूनतम तापमान है वह भी 24 से 25 रहवेज कर ही, और हवा में 75 से 80% नमी और गति लगभग एकर 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही, मतलब आज ले ज़्यादा रही कहा तो। तो एकर बार हमन धान के बुआई कतार में कर सकत हन। सकरी और चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार के नियंत्रण हेतु जे नमी है ओकर हिसाब से हमन बुआई 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर पानी दे के करना है, और ओकर हिसाब से कौन कौन सा दवाई छिड़कना है या का छिड़कना है ओकरो भी सलाह है और हमन ला मेघदूत ऐप में मिल जाते कहा। ये तो अतकी बढ़िया ऐप है संगी हो, सब लोग उपयोग करना चाहिए। हमारे किसान मन पर सरकार हद की लाभकारी ऐप बनाई से जिमें हमन ला सब प्रकार के जानकारी मिला थे, तो हमू ये उपयोग करी और तकनीक ला अपनाई है नहीं। अब देखा तो आज के बात में चलबो तो हमन ला देखना है कि खरीफ में दलहन और तिलहन लगाए ज़्यादा लाभ पाए, ये विषय में बातचीत करना है संगी हो। अभी के समय हर मौसम हर ऐसे होगी से जलवायु परिवर्तन के नाम हमन सुनबेच करथन, तो कोई कोई मोला कहते कि बाबू ये जलवायु परिवर्तन का है, जलवायु परिवर्तन ले हमन ला का हो जाही। तो अभी जिन होते ना वही हर जलवायु परिवर्तन है। जून के महीना में आज से 4 साल पहली 5 साल पहली 10 साल पहली जून के महीना पूरा पानी ले सराबोर रहे, लेकिन अभी के टाइम ला देखा थन तो जून के महीना हर ए खत्म होती में आ गए है और पानी है बिल्कुल चूहे कस नहीं हो है नहीं। और घाम के महीना ला देखे हन तो ए साल सबसे ज़्यादा घाम पड़ी से, तो ई हरे जलवायु परिवर्तन जेमा मौसम है ऐसे बदलते कि ओहर पाछू जिन चले आत रहते उसने नहीं चले अपन अलग तरीका से चलते। अब ऐसे तरीका से अगर मौसम चला थे और एहू में हमन धान में अटके रहो जिमें बहुत पानी के आवश्यकता रहते, तो हमन फिर खेती में पछुआ जाबो, हमला नुकसान हो जाही। एकरे बर खरीफ में हमन ला नवा नवा विकल्प के तरफ कूदना पड़ी जेन हर है दलहन और तिलहन। अब कनो कनो पूछते कि धान के बदले हमन दलहन तिलहन लगाबो तो हमन ला फायदा का मिलही, तो सबसे बड़े फायदा यही है कि कम पानी में सुघर पैदावार रहते। देखा तो रायगढ़ में अभी पानी गिरते नहीं है, कतको जगह में नहीं गिरत है, तो ऐसे में बुआई है हमार रुके है। अब हमन अगर धान के बुआई करना है तो बढ़िया ले पानी गिरना चाहिए, एकदम लबालब पानी गिर ही तो बुआई होते। ऐसे में अगर हमन दलहन फसल या तिलहन फसल जैसे अरहर है, उड़ीद है, मूंग, तिलहन में लेबो तो सोयाबीन, फली या तिली के फसल लगाबो तो एला बोवाई बेरा में भी ज़्यादा पानी के जरूरत नहीं रहे, और कम पानी या फिर सूखा भी पड़ गए तो किसान ला पूरा नुकसान नहीं होए। ए हर बढ़िया मात्रा में होते और किसान के जेब में एकदम खाली नहीं होंदे कुछ ना कुछ पैसा, और मैं तो कहता हूँ बढ़िया पैसा। अभी जिन हिसाब से दलहन और तिलहन के पैदावार है ओकर बाजार में मांग है ओकर हिसाब से किसान ला धान कस या धान ले ज़्यादा भी पैसा मिल सकते हैं। दूसरा

0: बात है माटी के उपजाऊ शक्ति। अब देखा तो हमन का है कि खरीफ में धान लगा लगा के जैसे गाय ल बहुत दूह दूह के आखिर में गाय हर दूध देना बहुत कम हो जाते है। उसने अभी के माटी है ऐसे होगी से कि हमन खरीफ धान लगा के फिर बाद में गेहूँ लगा दें, ऐसे करके माटी हर पूरा खराब होगी से समझ जावा। ऐसे में हमन दलहन या तिलहन फसल लगाबो, खास करके दलहन फसल जेकर जड़ी में ऐसे बैक्टीरिया मिलते जे हर चारों तरफ के नाइट्रोजन ला खींच खींच के भुइया में अमराज जाते, तो ये हर का करही कि माटी हर जिन एकदम ठरागी से एकदम मतलब अनुपजाऊ होगी से ओहू ले उपजाऊ बनाना चालू कर दी। बाजार में मांग के बात करबो तो हमार दलहन और तिलहन दाल ल देखत दाल ल बिसोए जाहा, उरीद दाल चाहे मूंग दाल होए ओला बिसोए जाए में हमन ला पता चलते कि धान ले कतको महंगा बिकते, तो ओकर हिसाब से किसान अगर एला उगाही भी तो ओला अपन धान के पैदावार ले ओला ज़्यादा दाम मिली। अगला बात है कि लागत में कम है, जैसे का होते कि धान के फसल लग भी गए जैसे अभी पानी गिर के आदमी बुवाई कर भी ले, लेकिन अगर बाद में पानी नहीं गिरी सूखा पड़ गए तो किसान क्या करते कि फिर मोटर चला चला के खींच खींच के खेत ला भरत है, एक तो में भूजल के भी नुकसान होते और दूसरा बात ओकर मोटर में बिजली लगत है ओकरो नुकसान होते, तो ओकर ले अच्छा है कि ये दलहन तिलहन हमन लगाबो तो एकदम खेत ला लबालब पानी ले भरना नहीं पड़े, दो सिंचाई तीन सिंचाई जैसे कृषि विशेषज्ञ मन बताए उतना सिंचाई लगते और ओकर हिसाब से ये फसल मन तैयार हो जाते। अब खेत के तैयारी एकर बर भी ऐसे नहीं है कि धान लगाए बर तो हमन गहरा जोत डाले हन या कुछ आने तैयारी करना पड़ते, एकदम खेत के तैयारी जैसे धान के हमन करथन उसने ही एक तैयारी करना पड़ते दलहन लेवा चाहे तिलहन के। और जैसे गर्मी में हमन गहरा जोते हन उसने गहरा जोत देवा और कृषि विशेषज्ञ मन ले सलाह लेवा या फिर अपन बाबा मन ले पूछ के केला कतकी कतकी दूरियां में लगाना है बीजा ला कैसे अंकुरण करना है जेकर ले हमन ला अच्छा पैदावार मिले ओला करवावा, तो फिर एकर बुवाई करके हमन बढ़िया फसल ले सकत हन। एक बात और है कि बीजोपचार चाहे कोई भी फसल ले हन, जैसे लड़का ला लैकई में हमन ला टीका लगाना पड़ते उसने हमन ला कोई भी फसल चाहे दलहन तिलहन चाहे कुछ भी हो बीजोपचार करना बड़ जरूरी है। बीजोपचार बढ़िया से हमन करके फसल लगाबो तो फसल है शुरुआती अवस्था में कोनो भी रोग बीमारी या फिर कमजोरी ले बाँचे रहते। सरकार डहर ले लाभ भी देहे जाते जिन किसान दलहन या तिलहन फसल लगाते उमन ला MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराए जाते जेकर ले किसान ला कोनो प्रकार के नुकसान मत होए, सोसाइटी ले उमन ला बीजा और खातु भी मिलत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उमन के फसल के खरीफ फसल में अगर धान के अलावा भी कुछ लगाही तो ओकरो बीमा होते ओकर नुकसान में उमन ला भरपाई भी मिलते और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तरफ ले भी सहायता मिलते, तो अतकी बढ़िया हमन ला सहायता मिली संगी हो। तो हमन के भी काम है कि हमू मन मौसम के बदलते मिजाज और अपन आज के मांग ला देखत हुए दलहन और तिलहन कति रुख करन और अपन खेती ला आगू बढ़ान। अब बेरा हो गए संगी हो आज के किसान के हमर क्रम के, तो आज के किसान के क्रम में मैं गए रहे गांव लैलूंगा विकासखंड लैलूंगा और वहाँ हमार किसान है जतिराम भगत, वहाँ धान लगाए रही ने और उकर लाभकारी खेती कैसे करें वो विषय में मैं उकर ले बातचीत करें, तो चला उकर ले मोर बातचीत ला सुनी। संगी हो राम राम जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संगी हर्ष और स्वागत है आप सबो जिन के संगी हो ए भाग में हमन जाथन रायगढ़ के अलग अलग गांव धरी मन में और हमार किसनहा संगी मन ले बात करथन जेकर ले उकर खेती पाती के तौर तरीका ला सीख के हमू अपन खेती पाती ला और बढ़िया ले बढ़िया कर सकन। यही क्रम में मैं आगे हूँ लैलूंगा और यहाँ हमार संगी एक किसान साथी जे जैविक तरीका ले खेती करत है और संगे में गाय भी राखे है, तो चलो इकर ले बात करबो और जानबो कि ये अपन खेती ला कैसे करते। राम राम किसान साथी।
1: राम राम।
0: का नाम है जी आपकी?
1: मोर नाम जति राम भगत है सर।
0: तो भैया हमन ला बताइए कि अभी आपके खेत के खेत में का चलत है?
1: अभी तो भैया अभी गर्मी में अभी उड़द और मूंग लगाए रहे हैं। अच्छा। अभी तोड़ाई करे हैं। हाँ। निंदाई करे हैं। ओकर बाद में अभी धान लगाए के तैयारी करत हन। धान लगाए के तैयारी में अभी गहरी जो

0: जुताई करे हन दो बात हो
1: तब ये गहरी जुताई जैसे करता था ओला कब करे है लगभग अभी ले
0: अभी 8 दिन पहले करे हन सर।
1: अच्छा तो गहरी जुताई ले आप लोग का फायदा होते
0: गहरी जुताई ले है सर कि जो जमीन में जीवाणु जो रहते जीवाणु के अंडा में रहते हैं जो जीव जंतु के वो नष्ट हो जाते हैं ये धूप में।
1: हाँ तो गहरी एक बार जोत देथन तो भूया पूरा पलट के ओकर जीवाणु मन खत्म हो जाते कहा और यही है जैविक खेती के एक ठी बहुत बड़े आधान है और भैया ओकर बाद गहरी जोताई के बाद अगला काम का रही
0: ओकर बाद सर अगला बात जैविक खेती में हमन अभी ढेचाओ में लगा था या उड़द या मूंगरा लगा था जो सड़ा के हरी खाद बना था।
1: अच्छा हरी खाद बना था तो आप कौन सा फसल लगी है
0: अभी ओकर बाद धान लगाओ सर।
1: अच्छा तो जैसे हरी खाद के बाद धान लगा ले भैया का फायदा है
0: सर उनमें फायदा ये है कि अपन में रासायनिक खाद डालना नहीं पड़े जैविक खाद ही बन जाते हर जो ढेंचा और मूंग जो है उड़द ले लो जैविक खाद बनाते हैं तो
1: और पैसा की भी बचत होती
0: है पैसा के बचत होते सर।
1: जैसे गहरी जोताई कर डाला भैया ओकर बाद बीज बुआई की आपकी विधि कौन सा रही
0: बीज बुआई के सर हम जैसे अभी अभी अपन करा तो जवा फूल के बीज लगा था तो जवा फूल के बीज ला उपचारित कर था पहले सर। उपचारित
1: कैसे उपचारित कर था
0: उपचारित तो सर उसमें नमक पानी से उपचारित कर था नमक पानी 17% कर था जैसे 50 लीटर पानी ले हैं तो उसमें 17 किलो नमक डाले तो नमक से वाला उपचारित कर था पहले।
1: अच्छा और नमक ले उपचारित करे के बाद बीजाला कैसे करता
0: बीजाला उपचारित करता वाला धोथन ओकर बाद में 2-4 दिन रखता घर में हाँ। बढ़िया साफ पानी में धो देता 3-4 बार जो में नमक के मात्रा मत रहे तो ओकर बाद में वाला नर्सरी में डालता सर।
1: अच्छा नर्सरी बना के हाँ। फिर रोपाई करता कहा तो नर्सरी बनाए पर भी कुछ कुछ मतलब जिन जरूरी बात है ओकर बारे में हम मतलब बताइए कि नर्सरी आप कैसे जगह में बना था खेत के
0: नर्सरी ऐसे जगह में लगा था सर जो खेत में हम जो धान लगा था वही खेत में ही नर्सरी लगा था पानी के सुविधा तो है कहो तो उच कर ही नर्सरी लगा था वही खेत में।
1: और नर्सरी के पौधा हर लगभग कतकी दिन नर्सरी में रहते ओकर बाद ओकर रोपाई कर था
0: सर हमारे हर देसी धान वाला 20 से 21 दिन तक नर्सरी में रखथन 20-21 दिन बाद वाला उखाड़ थन ओकर बाद में वाला रोपाई करथन।
1: तो नर्सरी में जिन पौधा ला पोट्ठ बनाना रहते तो ओकर पोट्ठ बनाए पर का करता
0: सर उसमें हमन जैसे वर्मी कम्पोस्ट भी डालथन हमारे कर केंचुआ खाद भी बनते वो खाद मतलब डाले ले पोस्ट बन जाते वह
1: तो मतलब ये है कि जैसे दूसर किसान मन है जिन मन रासायनिक विधि ले खेती करत है वो मन नर्सरी में भी भर भर के मन रासायनिक खातू डालते ओकर जगह हमन अगर जैविक खेती करत हन तो उनमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर खातू के उपयोग कर सकत हन ओकरो ले उतकी ही पोट बनत हो नहीं
0: जी सर जी सर वैसे ही बनते ओकर से ज्यादा पोट बनते और तंदुरुस्त बनते और बीमार नहीं हो पौधा।
1: ओकर बाद रोपाई आप लेबर लगा के करा था कि मशीन लेकर था
0: सर मैं तो ये जवा फूल के धान ला श्री विधि से रोपाई करो था लाइन के कतार
1: भी श्री विधि में रोपाई करता तो हम ला श्री विधि के बारे में और थोड़े विस्तार ले बताइए
0: जैसे श्री विधि लगा था सर कतार रोपा में हाँ। कतार रोपा जैसे पहले आज लगाए ओकर 10वां दिन बाद में सर जो ओकर गैपिंग रहते 6-7 इंच के जो कतार से कतार की दूरी उसमें बीडर चला था सर तो बीडर जो चला था उसमें खरपतवार के भी नुकसान होते और जमीन हर पलटी होते सर जमीन की उपजाऊपन में बढ़ते तो बीडर हर 10 दिन में चलाना है सर रोपाई के बाद तो 3 बीडर चलाए के बाद में उसमें कंसा एक देसी धान में भी सर आप मन देखे मोरकर जवा फूल में अभी लगा हूँ तो 30 से 35-40 कंसा निकालते हमें बीडर चलाए
1: और सामान्य तौर पर बिना बीडर चलाए कतकी निकालते
0: 4 से 5 कंसा निकाले
1: मतलब 10 मतलब 8 गुना 5 गुना 8 गुना आप मिला थे फायदा कहा
0: जी सर हमें कंसा बहुत ज्यादा निकालते सर बीडर चलाए में और का है बोला
1: भैया एक बात तो हो गए हर बुवाई के संबंधित अब एक बात हमन देखबो कि जिन जैविक विधि ले खेती करत है ओला खरपतवार के समस्या भी सामना करना पड़ी तो वो खरपतवार के समस्या ले कैसे ओहर दूर करी
0: सर जो नर्सरी डालथनों में तो खरपतवार तो नहीं आए नहीं उगे ना बहुत ही कम मात्रा में खरपतवार रही लेकिन जब अपन रोपाई करथन ओकर बाद खरपतवार नाशी थे हाँ। तो अपन जो कतार विधि में जो रोपाई कर रहा था तो हाँ। खरपतवार नाशी की एक ही उपाय है कि उसमें बीडर चला था तो बहुत आसानी से उसमें खरपतवार समाप्त हो जाते और वो खरपतवार समाप्त हो ही और खाद बन जाए खेत में सर।
1: अच्छा तो यह दोहरा लाभ समझ जावा खरपतवार नाशी के भी हमें छिड़काव नहीं करना पड़े
0: जी सर नहीं पड़े
1: और संगे में वो खरपतवार मन जिन मन हो थे भी थोड़मोन हर आपके खातु बन के खेत में मिल जाते भैया अतकी बढ़िया तरीका ले आप जैविक खेती करा था और ओकर तरीका ला भी हमन ले साझा करा हमार दूसर रेडियो में सुनोया किसान संगी मन ला आप का संदेश देना चाहता
0: मैं किसान संग

0: अरे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैविक खेती ला अपनाओ, नहीं तो हमार आने वाला पीढ़ी मन में बहुत कष्ट हो ही कि हमार जमीन है बंजर हो जाए, हमार आने वाला पीढ़ी पता नहीं खेती कर पाई नहीं कर पाई। ओकर से थी मैं आप मन अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम थोड़े थोड़े मात्रा में जैविक खेती ला करना चालू करो, और 2 साल 3 साल 4 साल बाद में अगर फायदा हर अपने आप दिखना चालू हो जाते हैं संगवारी हो। मैं तो अभी 2018 ले जैविक खेती करत हूँ और मोला पूर्ण रूप से फायदा दिखते कि मोला रासायनिक खाद के उपयोग करना नहीं पड़े, ना कोई कीटनाशक के उपयोग नहीं करना पड़े, बहुत ही कम रोग व्याधि लगते मोर जमीन में संगवारी हो। मैं आप मतलब यही संदेश देना चाहूँ कि हमारे आने वाला पीढ़ी पर हमारी जमीन ला बचाई बंजर नहीं होने दी, यही संदेश देना चाहता हूँ।
1: तो भैया अतकी बढ़िया जानकारी दिया, जवा फूल के खेती करा था जैविक विधि ले करा था, और अतकी दुढ़िया लैलूंगा अंचल ने हमारे लिए जानकारी साझा करे पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे आकाशवाणी परिवार ने अपन बेरा दिया एक बार भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार
0: धन्यवाद।
2: खर्चा अपना निकल जाता है।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त थी। और लो, पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सब ही डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे।
1: सच
2: है? बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: संगी हो, दूठी बढ़िया जानकारी वाला विज्ञापन हम सुनें। एक थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक थी परंपरागत कृषि विकास योजना, दोनों एकदम जानकारी वाले योजना रही। और एक थी तो हमार आज के चर्चा के विषय घलो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हर हमार खेती किसानी जैसे बात करते हैं कि लगातार पानी की कमी ले जूझत है अभी, और उसने में कभू कहा हुई कि बुआई के बाद भी पानी नहीं गिर ही तो सूखा की स्थिति आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतके सारा फायदा है कि सिर्फ एहर ऐसे नहीं है कि सूखा पर यही तभी किसान ला फायदा मिली। किसान के बोवाई खराब होगी तहाँ ले धान ला भर के ओहर अपन कोठार में रखे है वहाँ तक बीच में जतके भी नुकसान है सब ला कवर करते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जेकर प्रीमियम है खरीफ बर 2%। अब एहर कैसे पता चली? तो संगी हो, धान के हिसाब ले या हमर जैसे हमन केसीसी में लोन लेथन तो ओकर हिसाब ले फसल के जिन बीमा है वह बैंक डहर ले खुदे खुद कट जाते, और बीमा अगर हमला नहीं करवाना है तब जाके हमला बैंक ला बताना पड़ते या सोसाइटी ला बताना पड़ते कि हमला बीमा नहीं करवाना है, प्रीमियम हमर झन काटिया, नहीं तो आपे आप कट जाते। और अगर को काकरो नहीं भी कटत हुई तो आधार कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड अपन या ऋण पुस्तिका B1 ये सब ले के सोसाइटी या फिर बैंक में जाके हमन बताबो तो ओमन अगर ये योजना में नाम नहीं जुड़े हो ही या जुड़ के हमर खाता ले पैसा एकर प्रीमियम नहीं कटत हो ही तो ओला कटवा के हमर जिन फसल है ओकर बीमा कर दी। कभी कभी कहा होते कि कोनो तकनीकी खराबी के कारण ऐसे नहीं हो पाए कि हमर प्रीमियम सीधा कट जाही, लेकिन किसान ये सोच के खुश हो जाही कि मोर तो प्रीमियम नहीं कटिस और पैसा बांध गए, तो यह गलत है।

कहे कि अगर ऐसे हो ही तहां बाद में ओला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ भी नहीं मिले अगर ओकर कोनो प्रकार के नुकसान हो ही। तो जरूर ये बात के ध्यान रखा और ये योजना के लाभ लेवा। अगला है संगी हो हमला नसीहत के विषय में गोट बात करना है, जे हर है वैज्ञानिक विधि ले खेती अपनाए और अपने को समृद्ध बनाए। साथी हो आज देखथन तो पूरा दुनिया हर वैज्ञानिक विधि और नवा नवा तकनीक कति भागत है। कल जिन कपड़ा ला हमन हाथ ले कचार कचार के धोत रहन तलाव तीर मा, आज ओला कचारे धोए वाला नवा मशीन आ गए है। खाना बनाए बर पानी छाने बर पूड़ी बनाए बर रोटी बनाए बर ले ले के टीवी कंप्यूटर आजकल सबो कति और आजकल तो नवा नवा जो है हवा तक ला छान देते ऐसे मशीन आ गई से। अब अतकी सारा वैज्ञानिक पद्धति के जमाना आ गई से और ये वैज्ञानिक पद्धति है हमार खेती किसानी में भी आते, लेकिन हमन जिन जैसे पहली नांगर ले जोताई करन अब वह ट्रैक्टर आ गई रोटावेटर आ गई पाटा मारे के मशीन हमार ट्रैक्टर में लगाए वाला आते, लेकिन तबो ले हमन पाछू में हन। अब तो नवा नवा अतकी सारा तकनीक मन आ गिन है कि जेकर बारे में हमन ला पता नहीं है और यह रुकिस नहीं है, खोज अभी भी चलत है और नवा नवा वैज्ञानिक तकनीक मन अभी भी आ जाते हैं। तो हमन का करन कि देखा जिन तकनीक में पैसा ज़्यादा झोंकना पड़ी, जैसे कि मान के चला कोनो महंगा मशीन है तो ओला तो हमन नहीं लगा सकन, लेकिन बहुत सारा वैज्ञानिक तकनीक ऐसे है जेला हमन आसानी से कर सकत हन। जैसे माटी परीक्षण हो गए, उन्नत बीज और फल फसल प्रबंधन हो गए, सिंचाई के बढ़िया प्रबंधन हो गए, कीड़ा मकोड़ा के प्रबंधन हो गए, एला हमन बहुत बढ़िया तरीका ले कर सकत हन और अपन जिन पहली लागत लगत रही से ओकर ले कम लागत में अपन खेती ला कर सकत हन। अतकी बढ़िया वैज्ञानिक तरीका मन आ गिन है। तो आदमी सोचते हैं कि वैज्ञानिक तरीका है तो हमें ज़्यादा पैसा लगी, ऐसे नहीं है। जैसे माटी परीक्षण के बात करबो तो खेत के नींव हमार माटी रहते, किसान अभी बोनी करही तो का चीज़ में करही, माटी में करही। बिना माटी के स्वास्थ्य जाने अगर हमन खेती करबो तो ऐसे हो जाही जैसे अंधियार में हमन तीर चलाथन। हमार छत्तीसगढ़ में सरकार कईठन माटी परीक्षण प्रयोगशाला खोले है और सरकार डहर ले सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाए जाते जिमें एकदम सस्ता मा वैज्ञानिक तरीका ले किसान मन ला माटी परीक्षण के सुविधा उपलब्ध कराए जाते। सरकार होकर दुआरी तक अमरावत है तो माटी के जांच हर किसान ला करवाना चाहिए और ओकर हिसाब ले अगर किसान ह अपन खेत में खातू चाहे कंपोस्ट खातु होए चाहे वर्मी कंपोस्ट चाहे हरा खातु या जीवाणु खातु होए, जिमें परंपरागत कृषि विकास योजना के भी विज्ञापन सुनात रहें जिमें रासायनिक खातु ले हमन ला दूर हटना है। तो अगर हमन पहली ले माटी परीक्षण करवाबो और ओकर हिसाब ले हमन जैविक तरीका के हमन खातु बोरबो तो हमन ला बहुत फायदा होही। एक बात और है जेन हर है उन्नत बीज और फसल प्रबंधन के। माटी में अच्छा फसल बर जेन चीज हमन ला दूसरा चीज चाहिए वो हर है बीजा। माटी में जेन चीज बोबो ओहर का है बीजा है। तो वैज्ञानिक पद्धति ले अब प्रमाणित बीजा सरकार कति ले हमन ला अब्बड़ सस्ता दाम में सोसाइटी ले मिलते और नहीं लेना है सोसाइटी ले तो पूसा या सरकार ह अलग अलग नाम भी बता दी से बीजा मन के। जेन भी फसल आपने लगाना है, दलहन लगाना है, तिलहन लगाना है या धान लगाना है, गेहूं लगाना है, कोई भी फसल लगाना है ओकर पूरा लिस्ट जारी कर दे है सरकार है कि ओकर बर कौन कौन सा बीजा हर बढ़िया रथे तो वो बीजा ला हमन बाजार ले खरीद सकत हन। लेकिन सोसाइटी के माध्यम ले जब उपलब्ध हो जाते तो हमन सोसाइटी ले लेबो तो ज़्यादा फायदा रही। तो उन्नत बीजा के का फायदा है या प्रमाणित बीजा जेला कहते हैं ओकर का फायदा है एकर बात करबो तो देखा तो प्रमाणित बीजा में हमार जेन लगातार बीमारी होते रहते ओकर ले बचाए वाला पद्धति मन वो बीजा में पहले ले फिट रहते। जैसे कोनो कोनो में का होते कि शुरुआतीच में माहू धर दीस या कोनो और बीमारी धर दीस तो वो बीजा ला हम वैज्ञानिक तरीका ले ऐसे तैयार करे जाते कि ओमे शुरुआती अवस्था में वो बीमारी झन होए। तो किसान ला का फायदा हो ही कि किसान अगर वो बीजा ला लगा ही तो शुरुआती अवस्था में ओला कीड़ा मारे के दवाई ला नहीं छिड़कना पड़े तो किसान के जेब में भी ओहर भारी नहीं पड़े और किसान ला पैदावार भी बढ़िया हुई। काहे कि एक बार कीड़ा

गिस। भले ही बाद में वाला दवाई छींच के भगा लेवा, लेकिन कुछ न कुछ पौधा मतलब कीड़ा है बर्बाद कर ही दी। 0% नुकसान कभी नहीं करे, 1%, 2%, 10% कतको भी नुकसान करी तो वो 1% नुकसान अभी तो नुकसान होते छे। अब सिंचाई प्रबंधन के बात करबो तो संगी हो, खेती बर जल प्रबंधन तको जरूरी है। खेती में अभी बात करत रहें सूखा परत है, और सूखा परत है तो ये नहीं है कि धान के फसल लगाथन तो पंप ले खींच के पूरा खेत ला लबालब भरना है। हमन दूसर तरीका यानी कि स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति भी उपयोग कर सकत हन। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में का होते कि यह बरसात कस ही पानी ला पूरा खेत में बगराथे, जेकर ले पानी की खपत भी कम होते और धान ला लगते कि जेन पानी है ओहर धान ला पता नहीं चले कि वो आसमान ले गिरा थे कि मशीन ले गिरा थे। धान भर तो पानी है, पानी चे जेन ऊपर ले गिरा थे तो धान के पैदावार है भी बहुत बढ़िया होते। संगे माँ कीड़ा मकोड़ा प्रबंधन के बात करबो तो एकर बर भी वैज्ञानिक पद्धति है, जेमे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कथे। एमे हमन पारंपरिक तरीका और रासायनिक तरीका दोनों ला मिला के बोलथन। पारंपरिक तरीका में कतको तरीका के हमन बात आगू भी करे हन और करत भी रहो। जैसे हमन धान के फसल दू ठी खेत के बीच में गेंदा के पौधा मन ला लगा देवो, तो गेंदा ह का करथे कि कीड़ा मन ला नहाके नहीं देख फसल ले दूसर फसल में, और हमर जिन कीड़ा है ओहर ज़्यादा बड़े खेत में बगरे नहीं पाए। तो हमर खुदे एक किसान के मान के चला 5 डोली है और वह बीच में पूरा गेंदा लगाई से, तो ऐसे नहीं है कि अगर एक खेत में कोनो आने खेत ले आके कीड़ा है ढाक गी से तो ओहर अपन खेत मन में ढाके ले बचा सकत है, या आने खेत और अपन खेत के बीच में भी गेंदा के पेड़ ले लगा दीस तो आने खेत के भी कीड़ा मन हमर खेत में नहीं आ सके। ऐसे करके कतको सारा तकनीक है संगी हो, खरपतवार प्रबंधन मन मल्चिंग करन चाहे निराई गुड़ाई समय में करन, फसल चक्र धान के बाद चना या धान के बाद मसरी या धान के बाद मूंग लगा सकतन हमन। कृषि विविधीकरण के बात करते चलतन जिमें मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, डेयरी व्यवसाय है, बकरी पालन है या कुकरी पालन भी हमन कर सकतन। ये सब हमर वैज्ञानिक विधि ले हमन करके बढ़िया ले बढ़िया लाभ ले सकतन। अब अतकी देर तक गोट बात करें संगी हो, गला भी सुखाए बरोबर लगत है, तो महू पानी पी के आत हूँ और हमू मन चला एक थी लोकगीत ला सुनी, तब तक और बढ़िया हमर खेती बाड़ी के गोट बात ला फिर आगू बढ़ावो।

संगी हो सुघर लोकगीत ला सुनेन, जेकर कलाकार हैं संतोष शुक्ला और साथी। अब आज के टीप के बात करी, ओकर पहली हमर आज के कृषक प्रश्न मंच के भी हमन प्रश्न ला पूछ ली, जेकर उत्तर आप मन हमन ला लिख के भेजता हो। तो हमर आज के कृषक प्रश्न मंच के प्रश्न है कि खरीफ फसल मा धान के जगह लगाए जाने वाला दू ठी दलहन फसल के नाम हमन ला बताना है। प्रश्न ला एक बार फिर आप मन सुन लो। खरीफ के सीजन मा दलहन के जिन दू ठी फसल है जेला हमन धान के जगह में लगा सकत हन, ओकर आप मन ला नाम बताना है। अब आज के टिप के बात करबो तो हमन ला कृषि कार्य के समय हमेशा तैयार रखना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा किट। संगवारी हो, हमर जतकी भी किसान भाई या बनिहार मन है, उनकर बर खेत खार के काम है कोनो तपस्या ले कम नहीं है। खेती के काम में जतकी मेहनत है ओमा विपत्ति और अलहन के भी थोड़े मोड़े डर रहते। खेती में हमन ला हसिया खुरपी ले लागे ले लेके सांप बिच्छी कीड़ा मकोड़ा के चाबे के डर और कीटनाशक या दवाई के छींचत हन ओकर रिएक्शन या ट्रैक्टर या बड़े मशीन ले होइया अलहन, ये सब के खतरा खेती के संग मन ला हमन ला लगे रहते। ऐसे में जतकी खेत में कुदारी रापा या हसिया के जरूरत रहते उतके जरूरत है एक ठन प्राथमिक सुरक्षा किट के। अब किसान मन के काम में का का लुकाए खतरा थे ओकरे ओला जानबो तभे तो हमन ला पता चलही कि किसान बर प्राथमिक सुरक्षा किट है कतकी जरूरी है। तब बरसात के दिन में देखबो तो पानी है लबालब धान के खेत में भराए रहते, ऐसे में कांच है कांटा है घोंघी हुआ है एमन ले कटाई के खतरा रहते, जो कुआ कीड़ा मन चढ़ जाते हैं चाप देते हैं और सबसे ज़्यादा डर रहते सांप बिच्छी के जेमन पानी भरे के सेती अपन बिल ले निकल जाते और मेड़ या पैरा इति ओती में हरा घास में लुकाए रहते पता भी नहीं चले। निंदाई गुड़ाई या दवाई छींचे के बेरा में दवाई के धुआं है। अब जैसे हमन दवाई ला छींचत हन, अब दवाई का है बढ़िया छींचात है लेकिन अचानक से हवा पलट गए तो सब दवाई हमन मुंह में आके पड़ गए आँखी में या नाक में, ओकर ले हमन ला जलन दर्द हो लगीस ओकर डर रहते। या दवाई के हमर गंध ले अंदर चल दीस तो चक्कर है बेहोशी है, ये सब की भी समस्या है, उल्टी होना है ये सब भी समस्या हो सकत है। या लुवाई मिसाई करत हन तीन बेरा में हसिया ले कटाए के डर रहते, मिसत बेरा थ्रेसर मशीन में

चलत रथे ओकर ले खतरा रथे या ओहू कुछ नहीं लगिस त उड़त धुर्रा हे पैरा हे वो आँखी में पर गिस ओकर या जाड़ के महीना में कन्हिया पिराना गोड़ पिराना ये सब हमार आम समस्या है जेकर बर हमन प्राथमिक सुरक्षा किट के उपयोग कर सकत हन। ये सब विपत्ति मन ला देख के बात तो समझ में आते कि अलहन हर देखा तो बता के आयनी समय खराब रथे त हमन कथन कि हाथी के ऊपर बैठे मनखे ला भी कुकुर चाप देते। ऐसे बेरा में गांव के अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर बुलाए ले ओला पहुँचे में तो बखत लगबेज करते। यही बखत में अगर प्राथमिक सुरक्षा के रूप में हमन ला तुरते इलाज मिल जाही तो घाव ला गंभीर हो ले या कोनो मनखे के जीव ला भी तको हमन बचा सकत हन। अब प्राथमिक सुरक्षा किट के बात करबो तो सीधा भाखा में कहे जाए तो प्राथमिक सुरक्षा किट एक ठन ऐसे डब्बा है जेमा जरूरी जरूरी तुरते इलाज के सब साजो सामान हमन जमा करके रखथन ताकि कोनो बेरा में विपत्ति पड़ जाए तो कोनो चीज ला खोजे बर मत पड़े सब चीज हमार कना रहे। जब कोनो दुर्घटना होते तो डॉक्टर कना पहुँचे के पहली जेन हमार पहली जेन रिस्पॉन्स कथन हमन पहली जेन हमार काम रथे वो हर रथे कि प्राथमिक चिकित्सा करना रथे। जैसे अंगठी कट गिस तब ओला अंगठी है खून बोहात है ओला डॉक्टर कना ले जाबो तो कतको खून है बोहा जाही ओकर ले चाह मन का करबो कि अगर पट्टी रुई या मलहम राखे हन तो वो सब ले बढ़िया से पट्टी ला थोड़े बांध लेबो ताकि खून है रुक जाए ओकर बाद डॉक्टर कना ले जाके ओला दिखा के पूरा इलाज करवा लन। प्राथमिक सुरक्षा किट के बात करबो तो इमें का होना चाहिए तो एकर तो सबसे पहले डब्बा मजबूत टीना या प्लास्टिक के पहली तो टीना के डब्बा है और में पूरा धन के निशान बने रहते जे एमएलए मजबूत होए के मतलब है कि हवा पानी कहे कि में पट्टी रखा रही रुई रखा रही या कोनो प्रकार के क्रीम रखा रही वो हर नमी पा के खराब मत होए और ऐसे एकदम चटक रंग के डब्बा रहना चाहिए लाल होए चाहे एकदम सादा डब्बा होए जेमें दूरिया ले देखे ले पता चल जाए कोनो ला बतावन भी जैसे हम ला लाग दी से और कहूँ ला बतातन कि दोला ढूंढ दे रे बाबू दोला ढूंढ रहे तो वह खोजे में वाला बेरा मत लगे तत्काल वाला मिल जाए ऐसे डब्बा रहे और में निशान बना के रखन कि धन निशान लगे है तो वो पता चले सब ला कि वो प्राथमिक सुरक्षा किट है उमें का रख सकत हन तो उमें एंटीसेप्टिक क्रीम रखना है कोनो प्रकार की भी चोट लगे ले उमें जीवाणु संक्रमण के डर रहते जीवाणु मन मतलब घाव लो मन पको देते या पिलपिला देते तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाबो तो तुरंते लगाए ले जीवाणु के संक्रमण नहीं होए और घाव हाँ बांध जाते। कोनो बड़े जगह में लगी से तो एंटीसेप्टिक साबुन जैसे छोलाए जगह है तो वो जगह में एंटीसेप्टिक साबुन लगा सकत हन ओहू ला रखना है। साफ रुई रखना है अच्छा मात्रा में कम मात्रा में नहीं रहे अंगुल भर दो अंगुल भर मत रहे जाली वाला पट्टी रहे जिला डॉक्टर कना जाथन तो जाली वाला पट्टी रखे रहते उमन नीला कलर के या सफ़ेद कलर के कपड़ा में या कागज़ में वो लपटाए रहते वो वाला पट्टी रखना है चिपकाए वाला पट्टी रखना है जिमें तुरंत चिपकाए सकन जैसे हाथ गोड़ टूटे है कहूँ ला या लरक गिस उसने में हमन ला क्रेक बैंडेज रखना है मेडिकल टेप रखना है कटे फटे में लगाए वाला मलहम रख सकत हन जले वाला समस्या आते तो जले के मलहम रखना है घाम महीना में कोनो काम करत है तो ओ आर एस पाकिट रखना है ताकि चक्कर उक्कर घाम महीना में लगे तो ओ आर एस पाकिट ला निकाल के हो पी सके चिमटी रखना है छोटे कैंची रखना है पट्टी उट्टी काटे के काम आए और आँखी में धुर्रा हुआ जाए ले आई ड्रॉप रखना है ताकि आँख ला धो सके और आई ड्रॉप ला लगा सकन तो अतकी सारा चीज हमन ला रखना है आपू मन अपन आसपास के चिकित्सक ले जैसे मोर बात ला समझ नहीं पाए हो हा या पूरा चीज मन आप ला पता नहीं चली सो ही तो आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के डॉक्टर का ना जहाँ तो वो पूरा बता दी कि बाबू ये सामान ला रखना है वो सामान ला लिस्ट बना लेवा और बढ़िया एक डब्बा में रख के अपन गांज के रखा ताकि वो जरूरत पड़े बेरा में काम आए। संगी हो अति बढ़िया प्राथमिक सुरक्षा किट के बारे में बात करें जेहन आपातकाल के बेरा में हमार काम आ सकत है
अब एक ही लोकगीत ल फिर सुनी।

0: तो संगी हो अतकिल सुघर लोकगीतला सुनेन मंजूर नाचे जेकर कलाकार हैं रजनी रजक और बुद्धि सागर शर्मा। संगी हो अभी बात करत रहन कृषि किसानी के काम के समय हमन ला प्राथमिक सुरक्षा किट तैयार करके रखना चाहिए। अब हमार चर्चा के विषय आगे, तो चर्चा के विषय में है हमार महाराजा रणजीत सिंह। संगी हो भारत के इतिहास में एक ले बढ़ के एक राजा हुईने और उमे भी है पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह जेकर नाम बड़ आदर ले लेहे जाते। महाराजा रणजीत सिंह के जन्म 13 नवंबर 1780 के गुजरावाला में हो रही जेन हाँ पाकिस्तान में है और उनकर लैकई में देखा तो उनकर लैकई में उमला चेचक बीमारी हो गई रही से जेकर ले उनकर एक ठन आँखी के रोशनी चल दे रही से। फिर भी इकर ले उनकर साहस और पराक्रम रत्ती भर भी कम नहीं पड़ी। 10 बच्छर की उम्र में उमन अपन पहली लड़ाई लड़े रही ने और उला जीते भी रही ने। और ओ बेरा पंजाब ला बात करबो तो अभी के पंजाब है तो सिर्फ एक राज्य हो के ओ समय में पंजाब हर अभी के पंजाब तहाँ चारों कती आउ बहुत बड़े बगरे रही से और ओहू मन में अलग अलग गुट में बटे रही मन। रणजीत सिंह जी ओला अपन चतुराई और ताकत ले सिख मन ला सब झनला एक करीन और 19 बच्छर की उम्र में लाहौर ला जीत के अपन राजधानी बनाइन। उनकर सेना हर ओ बेरा मा भारत के सबले ताकतवर सेना रही ने। और हमन सुनबेज करथन कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा, तो मशहूर जिन कोहिनूर हीरा है ओला भारत वापसी लाए के काम तको महाराजा रणजीत सिंह करे रही ने। ओमन अमृतसर के जिन हरि मंदिर साहिब है ओमा सोना के परत चढ़ाइन और जेकर बाद ले अमन अमृतसर के मंदिर ला स्वर्ण मंदिर कथन। तो अमृतसर के मंदिर ला स्वर्ण मंदिर बनाए के भी काम महाराजा रणजीत सिंह करी ने। 27 जून 1839 के उनकर देहावसान हो गए और उकर बाद उनकर देहावसान तो हो गए लेकिन उनकर बहादुरी के किस्सा आज भी सब जगह गाए जाते खास करके हमारे सिख भाई मन के बीच में। तो उनकर ला हमन आज उनकर निर्माण तिथि में श्रोता करत हैं संगी हो। अब देखा तो बात हमार भेंट वार्ता के हो गए। भेंट वार्ता में हमन सुनबो लक्ष्मीन पटेल जिले रामविलास पटेल के भेंट वार्ता लेकिन ओकर आगू एक संदेश ला सुनी।
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करत रहे एक ठियाओ विषय है संगी हो चर्चा के खुद के पहचान बनाए और खुद के बिजनेस जमाए। कहे कि आज है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून के। हर बच्चर 27 जून के दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाते। ये दिन है वो जम्मो छोटे और मझला व्यापारी मन के आदर बर है जे मन अपन मेहनत ले सिर्फ अपन घर नहीं चलाते पूरा देश ल चलाते। हमार किसानी के काम में तको कतको प्रकार के छोटे और मझला किसान मन है जिन मन उद्यम चलाते। चाहे स्व सहायता समूह वाले दीदी मन हो गए चाहे दोना पत्तल बनाने वाला बड़ी पापड़ बनाने वाला किसान मन हो गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्यमंत्री स्वराज योजना बिहान जिला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कथे या लखपति दीदी योजना करके कतको योजना चला थे जेमा ले सरकार मन के सहायता भी करा थे। तो हमरो काम है कि हमन खाली झन बैठन ये योजना मन के लाभ लन और खुद के पहचान खुद के बिजनेस विस्थापित करन। चला अब लक्ष्मी पटेल जिले रामविलास पटेल के भेंटवार्ता ला सुनी।
4: संगवारी हो राम राम जय जोहार। भेंटवार्ता के अंश में हमारे बीच में ऐसे किसान उपस्थित हैं जो मन हल्दी उत्पादन से जुड़ी ने और हल्दी की खेती के संग में ये मन जो है हल्दी के प्रसंस्करण करके आमदनी ला बढ़ाते हैं। सबले पहले तो हमारे बीच किसानी उपस्थित है। सबले पहले राम राम जय जोहार।
5: राम राम जय जोहार।
4: आप मन के परिचय बता नाम।

0: मोना लक्ष्मी।
1: अच्छा, तो लक्ष्मी जी ये बताइए कि ये
0: हाँ
1: कौन विकास खंड में आते हैं? आप मन के गांव का है?
0: बोरमकेला।
1: बरम के विकास खंड में आते हैं।
0: हाँ
1: अच्छा, तो लक्ष्मी जी ये बताइए कि अभी की स्थिति में देखा जाए तो हल्दी की खेती करना लाभ लागत है
0: हाँ लाभ है।
1: कैसे?
0: ओ जगह दवा हाले कोल खोन के गुड़ा घोले बेच सकत हो, गोटला घोले बेच सकत
1: अच्छा,
0: हो।
1: मैंने दोनों के बिक्री हो जाते हैं।
0: हाँ दोनों को बेच रहे होते।
1: अच्छा, तो अभी वर्षा काल अब आवत है, अब जैसे खरीफ सीजन आवत जाते, हल्दी की खेती करे बर किसान भाई मन आगू आ जाते हैं,
0: हाँ
1: तो हल्दी की खेती कैसे करता?
0: जोतवा देथन है, जोतवा के गार कर के एक एक बीता में जगाथन।
1: एक बीता में
0: हाँ
1: और एक गाल ले दूसर गाल के दूरी का रखता
0: अहू और एक बिताल भारी रथी
1: एक
0: एक।
1: बीता,
0: हाँ एक मुठ बागी।
1: एक मुठ बागे।
0: हाँ चाकर रथे तो चाकर के बढ़िया होते राशि
1: अच्छा
0: खाए।
1: अच्छा, तो गार बना था तो मैं गार में का करता, बीजा ला कैसे डालता, का राखर डालता, खातू डालता, कैसे
0: डेपी डालथन।
1: डीपी डालता?
0: हाँ
1: अच्छा, और खातू आतू?
0: खातू डालथन।
1: अच्छा, अगर खातू उपलब्ध है तो दे दे ले, बढ़िया
0: हाँ
1: जेरी होकर आते का तो कांदा
0: हाँ
1: बनते।
0: हाँ
1: अच्छा, तो ये में फिर एकर बात कैसे करता आप मन वाला लगा देता? एक चीज ये बताइए कि बीजा कैसे करता आप मन? मूड़ी ला जगा था कि ओकर गोटा रहते ते ला जगा था?
0: ओ गोटा रहते तेहर तो बढ़िया जकना होते, लेकिन गोटा हर हरदी सही होती कथा ना मुड़ी ले भारी जगह से पोथी ला।
1: पोथीला?
0: हाँ
1: अच्छा, लमरी लमरी रहते तेला, तो
0: हाँ
1: कैसे आप मन लगा था और अंकुरित हो जाते, या कैसे जानता है कि लगा के लाग हो इसने? एक तो ऐसे मौसम के हिसाब से वर्षा काल जैसे है तो सूली भी आ जाते,
0: हाँ आ जाते।
1: तो सूली आ रहे थे तेल जगह था,
0: हाँ सुली आ जाते जगह था।
1: तो एक आग पानी बढ़िया गिरते तो जगाना चाहिए या सूखा में जगाना चाहिए?
0: एक पानी गिरेल तहाँ जगाएल तहाल कछु नहीं हो।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जगा के बाद फिर मैं पैरा कुटा दे देता।
0: हाँ जगह रही तो पैरा कुटा दी, यानी रही तो नहीं दे भले पैरा
1: अच्छा, तो का फायदा होते पैरा ला दे ले? अच्छा,
0: दे ले बन नहीं जामे कथे, और नहीं दे ले खोले बन जाम थे कथे। तो आजकल तो दवाई छीट देते हैं बन की।
1: तो नहीं जामे।
0: हाँ
1: अच्छा, और सार के बार लागते में देव
0: दुगा।
1: दो सार दे देव
0: हाँ एक जगह की गोला तोपे बरे या फिर घास सार दे बरे ता हो गए।
1: और राखड़ का तो फिर?
0: हाँ राखड़ खा तो घलाक थे। आओ
1: अच्छा, और रोग बीमारी में?
0: एमए रोग बीमारी मिला गया हर दिन में
1: अच्छा, और कतका लगा रहे दे पाछू बच्चर? कतका लगा रहा?
0: 30 डिसमिल।
1: 30 डिसमिल लगा रहा,
0: हाँ
1: तो ऐसो का तक लगा था अभी?
0: उनने फिर लगा बहुत की।
1: अच्छा, 30 डिसमिन फिर लगा के है कहा
0: हाँ
1: तो?
0: हाँ
1: अच्छा, तो पाछू बच्चर लगा रहा 30 डिसमिन, तो कैसे रही से उत्पादन?
0: बढ़िया रही है।
1: बढ़िया रही से।
0: हाँ
1: हल्दी में कहते हैं कि 1 साल नहीं खून ले भी और अच्छा होते, का कहना है आप मन के? हल्दी ला
0: नहीं
1: हर
0: खून देले
1: बच्चर?
0: तो आउ होते, लेकिन वो जो सकेले खून के बच्चर के जगह दे बोले फायदा है,
1: हाँ,
0: और नहीं खून दे तो कर फायदा है।
1: नहीं खून देले ओकर कांदा बाढ़ देते।
0: हाँ और सूखा तो सरथे गोले और सर के बाचे रहते थे, फिर तहाँ जाम थे। हाँ
1: अच्छा, तो ज्यादा पौधा होत हुई फिर वैसे में
0: ज्यादा
1: तो?
0: होते।
1: अच्छा, तो एकर जैसे आप मन कतका उत्पादन हो रही से? बढ़िया हो रही से उत्पादन पछु
0: हाँ
1: बचर?
0: हाँ बने हो रही।
1: अच्छा,
0: आउ
1: तो
0: हरदी ला कुआर जो रही जो पानी नहीं गिरे ले, 2-3 पानी पोलो दे ले पुठी हर कर बाढ़ थी।
1: बाढ़ जाते हैं।
0: हाँ
1: तो जैसे आप मन 30 डिसमिल लगा रखा तो 30 डिसमिल में उत्पादन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ला कैसे किलो में तौल था, अतका हो इसकी ओकर गुड़ा बना था तो आकलन लगा था कैसे करता?
0: ओ गुड़ा बड़ा थन तो लगा थन आउ बेथन उसन के तो एतकी किलो बेचन बेच के भी हिसाब लगा थन।
1: कतका हुई से दारी?
0: 30 किलो।
1: 30 किलो होगी। अच्छा, 30 डिसमिल में 30 किलो का
0: हाँ नहीं
1: तो
0: नहीं भारी हो ही।
1: भारी हुई।
0: हाँ
1: अच्छा
0: और 30 डिसमिल में जो
1: हाँ,
0: 1 क्विंटल हो ही।
1: अच्छा गुड़ा
0: और हाँ उसन को जाही।
1: है। अच्छा, 1 क्विंटल गुड़ा हो जाए ओकर
0: हाँ
1: पाउडर?
0: हाँ हो जाही
1: अच्छा
0: 30 डिसमिल बने छे ना।
1: अच्छा, तो 30 दिन बढ़िया उत्पादन लिए थे तो बढ़िया इनकम
0: हाँ
1: हो सका थे कहा तो? का
0: हाँ
1: भाव बेचा था आप मन?
0: गुड़ा ला 200।
1: अच्छा, 200 रुपये के हिसाब से बिक्री हो जाते,
0: हाँ
1: का कारण इतना मांग रहे थे कर गांव घर के हल्दी के?
0: गाय घर के हरदी में चाउ नहीं दवाए।
1: अच्छा, या
0: हाँ
1: मिलावट कर देते बाहरी वाला में?
0: बाहरी वाला मिलावट कर देते हैं। हमर हरदी लेक थी पसाग में देव तो जर्जर लगती।
1: अच्छा, मतलब क्वालिटी के कारण से?
0: हाँ क्वालिटी कारण से और सुंदर हमन पिसाधन बड़े मिल में
1: अच्छा, तो इला जैसे पिसाए के पहले कैसे करता?
0: उसन के सुखो के उलन पछर करके पिसान लेते।
1: अच्छा, गंजी में पानी डाल देता, हल्दी डाल देता। हाँ। और फिर वाला तोप देता।
0: हाँ।
1: तो तोपे के बाद वाला फिर कैसे करता, चुरोय बलाते?
0: चुरोथन पोचाई कर पलल कर से था उलथन।
1: अच्छा, वाला दबा के देखता।
0: हाँ।
1: अगर दबा के देखा, अगर वह मस्काते या पीछ गुलाते कहते हैं।
0: हाँ।
1: या
0: हाँ।
1: वह पूरा
0: हाँ।
1: हाथ में दब जाते।
0: हाँ।
1: तो फिर और होगी सी कथा
0: होगी सी
1: तो फिर वाला कैसे करता?
0: सुकोथन घाम में

0: वो काटे भी नहीं लागे, छोटे छोटे करके नहीं लागे। अच्छा, और छोटे छोटे होके फिर हो जाते हैं?
1: नहीं, छोटे छोटे मशीन में, धान कुटी मशीन में कर देते।
0: अच्छा, कर देते खुद?
1: हाँ।
0: अच्छा, हालर वाला कर देते?
1: हाँ, वाला कर के ताहले फिर पीटते।
0: अच्छा,
1: तो हम ओकरे धुर्रा माटी कछु नहीं रही।
0: अच्छा, धुर्रा माटी झाड़ भी जाते?

0: आपने?
1: हाँ आंवला का वो।
0: अच्छा तो बढ़िया, लाभ के सेती हल्दी के खेती का तो
1: लाभ के सेती।
0: तो हल्दी के बीजा कैसे करता आप मन? देहाती बीजा उपयोग करते?
1: नहीं घरेस के बीजा रखता,
0: वही छह रखता और वही छह हर साल उपयोग हो जाते
1: हैं। हल्दी बीजा रमते नहीं लगे।
0: अच्छा तो हल्दी के खेती में लाभ है का तो?
1: ना लाभ है।
0: अगर वोला खुला बेचत है, अगर कच्चा बेचत है तो का भाव भाग देते?
1: कच्चा बेचे ले 20 रुपया तक ढाल जाते।
0: अच्छा
1: थोक दे देते हैं
0: और पाउडर बना के बेचे। हाँ। और पूरा प्रसंस्करण इकाई के तहत यानी कहना चाहिए। हाँ। बोला गरम करिया वो करिया तो थोड़े रेट ज्यादा मिलते का?
1: ज्यादा मिलते रेट।
0: हाँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात है। चला आप मन बहुत सुगर जानकारी देव लक्ष्मी जी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर।
1: राम राम जय
2: जोहर। खरीफ में हल्दी के खेती कर प्रसंस्करण से जुड़कर आमदनी बढ़ाए विषय पर लक्ष्मी पटेल ले रामविलास पटेल के भेंटवार्ता ला सुनत रहे। संगी हो फसल उत्पादन करबो तो बीजोपचार भी हमन ला करना पड़ते, कहे कि बीज हमर पहली चीज है जिन हमर फसल माटी के बाद हमन अपन उपयोग करथन तो ओकर बीजोपचार के अबड़ सारा महत्व है। बीजोपचार है फसल पर एक ठीक किसान के टीकाकरण कसरत है जेला हमन बढ़िया ले करबो हमर जिन नवजात पौधा है वह सब कति के बीमारी और कमजोरी ले बाँचे रहते। और देखत हन संगी समय ला तब जाए के बेरा होते, तब फिर मिलबो फिर बात करबो नवा नवा विषय के बारे में। तब तक देवो अपन संगी हर्ष लविदा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी ले विदा लेके बेरा हो गए है। राम राम जय जोहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसानवाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाते हैं रीना राजन, रमन राजन और फिरदौस राजन के गाए हुए कुछ लोकप्रिय गैर फिल्मी गीत।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत आज आपने सुना रीना राजन और रमन राजन के गाए हुए कुछ लोकप्रिय गैर फिल्मी गीत। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजों में इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बरसात की एक रात, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह

0: में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने
3: को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत का

0: कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र

0: में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाज़ें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से, आवाज़ें एश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से, आवाज़ ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

मुस्कान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे।

बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना तेरे

0: उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई। एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।
1: या!

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर.डी. बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में

रहे थे, रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे। पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत। लीजिए, आप सुनिए आज़ादी का जय घोष, वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सभ्यसाची

0: भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है, और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में, इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: हरिहरन और रक्षा श्रीवास्तव की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: साधना सरगम और जसविंदर नरुला की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध संगीत, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यावनी। कार्यक्रम सूर्यावनी में आज सुनिए पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी। कार्यक्रम सूर्यामनी में आज आपने सुना पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल